हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 30 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने वाले हैं। सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। समाचारों के तुरंत बाद सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश

0: कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

0: साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का कथन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास सदैव रखना चाहिए। ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनते हैं भक्ति रचनाएं वंदनवार में।

0: प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।

0: एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है। हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के

0: कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। सुनते हैं एक देशभक्ति संगीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म कर्मा से। मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। फिल्म है कर्मा।

अभी आपने सुना मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को फिल्म कर्मा से। अब हम सुनते हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम का पहला गीत सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म है तेरी मेहरबानियां। सुनना चाहा है आप सबों ने। इसके लिए हमारे पास पत्र आया है आशा रेडियो श्रोता संघ महेर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। अभिजीत गोहाड़कर राही, श्रीमती सरिता गोहाड़कर, प्रिंस एकांश गोहाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता और अर्जुन गोहाड़कर टुक टुक। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं। वैशाली शैलेश गोहाड़कर, सुमिता और कुमार धोनी गोहाड़कर परी। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत फिल्म तेरी मेहरबानियां से।

कार्यक्रम के अगले गाने के लिए हमारे पास पत्र आया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा का। ये श्रोता है थाना नोखा रोहतास ग्राम कोन से सोनामती देवी, अर्चना देवी, रंजीता देवी, कुसुम देवी, प्रियंका कुमारी, प्रियंका देवी, शारदा देवी और प्रभा देवी। आप सभी ने सुनना चाहा है आर या पार फिल्म का ये गाना, कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज़ में। रानी मल्लिक के इस गीत को बीजू शाह ने संगीत दिया है। फिल्म है आर या पार।

कार्यक्रम की अगली पेशकश सुरेश वाडेकर और आशा भोसले की आवाज़ों में। माया गोविंद ने इस गीत को लिखा है और जगदीश जे ने संगीत दिया है। फिल्म है सजना साथ निभाना। सुनना चाहा है आप सबों ने। ग्राम कोन थाना नोखा रोहतास से धनजी प्रसाद चौरसिया, गंगा सागर चौरसिया, सोनू कुमार चौरसिया, पिंकू कुमार चौरसिया, भरत चौरसिया और कन्हैया बाबू इसी गाने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं। प्रफुल्ल चौक नहोना से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल सिंह, जयनाथ सिंह, हृदयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, बिमला देवी, मास्टर अनिल सिंह, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। तो डीजे सुनिए अपने मनपसंद का यह गाना फिल्म सजना साथ निभाना से।

सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, अनु मल्लिक का संगीत है, फिल्म है आरजू। सुनना चाहा है आप सबों ने। ये श्रोता हैं इंदिरा बिहार रायगढ़ से, वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां, उल्लाह अकरम नूरजहां। राजनंदगांव से आप हैं याकूब आसमा, यूसुफ इमरान, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और अदीबा तिवारी। आप सब उन्हें आरजू फिल्म का इस गाने को सुनना चाहा है अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में।

कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश फिल्म अमर अकबर अंथोनी से मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। फिल्म है अमर अकबर अंथोनी। सुनना चाहे आप सबों ने जय हिंद तेंदुआ नबीनगर से गिरेंद्र सिंह, सुजीत, अजीत और टुनटुन बाबू। ये श्रोता है गोकुल चौक गंगा जला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली, फलनाजा। नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, गजेंद्र कुमार, निराला। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आखिर में अमर अकबर अंथोनी फिल्म से ये गाना मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में।

0: बाल तो देखो,
1: अरे रंग लगाया
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मूठे
0: इसके दांत तो देखो।

0: चेहरा किसी का खिलता है, हमको है मालूम किसी से किसी से किसी से छुप कर ये भी मिलता है। मैं नाम बताऊं
1: अरे ना ना ना ना ना जी,
0: तस्वीर बताऊं
1: अरे ना जी ना जी ना जी,
0: डर गया वो कैसे बाजार में ऐसे, शरीफों को हम रुस्वा नहीं करते मियां जुम्मन, तैयवली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय।

फिल्म अमर अकबर अंथोनी के इसी गाना के साथ है। पत्रधारी फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी अभी यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में।

0: तरक्की का साथी।
1: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाश।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 211 नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए जिला स्तर पर संयुक्त टीम का होगा गठन। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का हो रहा है आयोजन। और मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार के कुछ जिलों में आंधी बारिश और दक्षिण बिहार में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 211 नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में ऐसे सरकारी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं जिन्हें नेट, JRF या PhD की योग्यता प्राप्त हो। इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 30 जून तक कर ली जाएगी। गौरतलब है कि इन नए डिग्री महाविद्यालयों में 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, उर्दू और मैथिली विषयों की पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए IIT पटना के साथ टाई अप करने के निर्देश दिए हैं। पटना में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। साथ ही श्री चौधरी ने राज्य के विद्यालयों और छात्रावासों में नामांकित इस वर्ग के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया है। इस पोर्टल पर किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव दिए जा सकेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि मिट्टी जाँच की सुविधा पंचायत स्तर पर पहुँचाई जाएगी। श्री ठाकुर ने खेत बचाओ अभियान के तहत पूर्णिया जिले के कठौली गांव में आयोजित कार्यक्रम में किसानों से संवाद के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 जून तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बचाना और कृषि लागत को कम करना है।
2: खेत स्वस्थ रहेगा तब ना हम स्वस्थ। कृषि विभाग ने ये समझा कि वैज्ञानिकों के साथ खेत में जाकर देखना, तो वो 2025 में हम लोगों ने किया। अब ये खेत बचाना है तो हर एक गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं, पदाधिकारियों को देख रहे हैं। एक महीने का अभियान है, इसमें जो रिपोर्ट आएगा, रिसर्च होगा, उसके बाद फिर दूसरा अभियान चले।
1: कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों ने अपने कृषि नवाचारों और

0: सफल प्रयोगों की भी जानकारी साझा की। राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की उपस्थिति में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत ने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर एक संयुक्त टीम गठित की जाएगी। इस टीम में अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला अग्निशमन पदाधिकारी और प्राधिकरण का एक नामित पदाधिकारी शामिल होगा। यह टीम अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानकों, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और फायर रिस्पॉन्स प्लान सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं का निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करेगी। राजधानी पटना में गिग वर्कर्स के लिए अत्याधुनिक एसी लाउंज की सुविधा शुरू हो गई है। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने गांधी मैदान और आयकर गोलंबर के पास बनाए गए विशेष एसी लाउंज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डिलीवरी पार्टनर से संवाद भी किया। इस दौरान श्री मिश्रा ने बताया कि बैठने की आरामदायक व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग सहित विभिन्न सुविधाओं से युक्त ये लॉन्ज गिग वर्कर्स को गर्मी, बारिश और अन्य प्रतिकूल मौसम में राहत प्रदान करेंगे।
1: हर एक घर की जरूरतों को इनके माध्यम से पूरा किया जाता है। उनकी असुविधा को देखते हुए कि जितनी गर्मी पड़ रही है कि उनको एक थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिले, एक स्थान दे, थोड़ा वो रेस्ट कर ले, तो पटना स्मार्ट सिटी ने ये सोचा। प्रयोग के तौर पर दो स्थानों पर हम लोगों ने शुरू किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मैं देखने के लिए आया, जैसे जैसे फीडबैक आएंगे, सुझाव आएंगे, आप लोगों से भी सुझाव मिलेंगे, तो इसको और हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।
0: गौरतलब है कि पटना देश का तीसरा शहर है जहां गिग वर्कर्स के लिए विशेष एसी लाउंज सुविधा विकसित की गई है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा। इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज 18 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत विभिन्न स्टेशनों से चलाई जाएंगी। इधर रेलवे ने कल भी 9 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया था। केंद्र सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। बिहार संग्रहालय ने पिछले वर्ष 5 लाख से अधिक टिकटधारी आगंतुकों का रिकॉर्ड दर्ज किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार संग्रहालय समिति की शासी निकाय की बैठक में संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समिति नई दिल्ली, गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना समेत देश भर में कुल 9 संग्रहालयों के विकास और स्थापना में अहम भूमिका निभा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने लोक कलाओं से संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। बिहार राज्य हज समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद राशिद हुसैन ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट और हज सुविधा ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: Download Waves OTT app now and watch for free.
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मौसम के दो रुख देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ उत्तर बिहार में मानसून के प्रभाव से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं, वहीं दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा समेत दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों में लू की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
1: इधर विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। इसके बाद अगले 3 दिन के दौरान तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक गिरावट की संभावना है। वहीं इस अवधि में 41.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस दौरान बक्सर, गया जी और शेखपुरा में लू की स्थिति बनी रही। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते कोसी और महानंदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। इसके चलते सहरसा, सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज जिले के निचले इलाकों में बाढ़ और कटाव का खतरा मंडराने लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड में महानंदा का जलस्तर बढ़ने से कटाव शुरू हो गया है। इधर कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही सहरसा के महिषी और सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। वहीं दरभंगा में कमला बलान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से खेधा पंचायत के कुछ गांवों का संपर्क पंचायत मुख्यालय से कट गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारी कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में अब तक लगभग 43% कम वर्षा हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: श्री चौहान ने कहा कि कार्य योजना के तौर पर वैकल्पिक फसलों, कम अवधि वाले किस्मों, फसल विविधीकरण और तालाबों, जलाशयों, चेक डैम, फॉर्म बाउंड और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पटना न्याय मंडल की सभी अदालतें 29 जून से सुबह 10 बजे से शाम 5:30 तक चलेंगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव के अनुसार प्रातःकालीन अदालत की बैठकें 27 जून तक ही होंगी। 29 जून से सभी अदालतों में दिवाकालीन बैठकें शुरू हो जाएंगी। गृह विभाग कारा ने पटना स्थित बेऊर जेल में भ्रष्टाचार और अराजकता के मामले में जेल अधीक्षक नीरज कुमार झा समेत 8 को निलंबित कर दिया है। इनमें एक कारा उपाधीक्षक, 4 सहायक अधीक्षक और 2 हवलदार शामिल हैं। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ऑटो रिक्शा से लगभग 23 किलो गांजा के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। यह ऑटो रिक्शा नेपाल से आ रहा था। पश्चिम चंपारण जिले के कुमारबाग थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के बाद पत्नी समेत 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। हादसे में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई जबकि पत्नी को बचा लिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां।

आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सभी सरकारी पॉलिटेक्निक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेंगे। प्रभात खबर ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, SDPO और तत्कालीन थानेदार सहित अन्य पुलिस वालों पर हत्या की प्राथमिकी। दैनिक भास्कर लिखता है, CUET में 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, नेशनल हाईवे पर अब गाड़ी मरम्मत की मिलेगी सुविधा। अखबार लिखता है, NHAI ने दिया क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश। राष्ट्रीय सागर की प्रमुख खबर है, पटना के 106 कोचिंग संस्थानों को बिहार अग्निशमन विभाग ने थमाया नोटिस। आज अखबार के शब्द हैं, अब बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 211 नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए जिला स्तर पर संयुक्त टीम का होगा गठन। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का हो रहा है आयोजन। और मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार के कुछ जिलों में आंधी बारिश और दक्षिण बिहार में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।
1: अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:05 हो गए हैं। नजर डालते हैं कार्यक्रम विवरण पर।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 9:10 पर हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका सुनेंगे। कार्यक्रम आज के फनकार विविध भारती से सुनेंगे सुबह 9:30 पर और सुबह 10:05 पर पूजा पुनः हाजिर होंगे आप सबों के सेवा में कार्यक्रम पुनः

माँ के साथ। भोजपुरी एल्बम लोकगीत कार्यक्रम लोक माधुरी सुन पाएंगे सुबह 10:30 पर और भोजपुरी एल्बम सॉन्ग सरसधार सुनेंगे सुबह 10:45 पर। भोजपुरी एल्बम लोकगीत का भाग दो लोक माधुरी सुन पाएंगे पूर्वाहन के 11 बजे से और 11:25 पर पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग। फिर आप सबों के सभा में पुनः हाजिर होंगे लोक माधुरी के साथ शाम 4:31 पर और कार्यक्रम वंदन सुनेंगे शाम 5:10 पर। महिला सखियों का कार्यक्रम घर आंगन सुन पाएंगे शाम 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीत कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6 बजे से और भोजपुरी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित शाम 6:05 पर।

रंग तरंग। फिर आप सबों के सभा में पुनः हाजिर होंगे लोक माधुरी के साथ शाम 4:31 पर, और कार्यक्रम वंदन सुनेंगे 5:10 पर। महिला सखियों का कार्यक्रम घर आंगन सुन पाएंगे 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीत कार्यक्रम सुनेंगे 6:00 से, और भोजपुरी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित 6:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर आज सुन पाएंगे 6:10 पर, और भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत सुनेंगे 6:40 पर।

गुड इवनिंग रोहतास। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम को सुनेंगे शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का समय होगा शाम 7:25 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले। फोनी फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद सुन पाएंगे शाम 7:50 पर और समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित शाम 8:45 पर। पुनः आप सबों के सभा में हाजिर होंगे रात्रि 9 बजे शास्त्रीय गायन कार्यक्रम सूर सौरभ के साथ है। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे वायलिन वादन, पंडित बीजी योगी तबला संगत करेंगे, कनाई दत्त राग जय जवंती। आज के फनकार विविध भारती के कार्यक्रम सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर और हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसरंग सुनेंगे रात्रि 10 बजे से। हिंदी फिल्म संगीत चित्रपट तराने का समय होगा रात्रि 10:30 पर और अगले दिन का कार्यक्रम मौसम पूर्वानुमान सुन पाएंगे रात्रि 10:55 पर। रोजाना की तरह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार 11 बजे, अंग्रेजी समाचार 11:05 पर, सभा का समापन 11:10 पर।

अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के सासाराम केंद्र का प्रसारण कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। श्रोताओं, सुबह के 9:10 हुए हैं, सुनते हैं हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका।

अभी आपने कार्यक्रम गीत मालिका में सुना बाबुल सुप्रियो को। देव कोहली ने इस गीत को लिखा था, अनु मलिक ने अपने संगीत से संवारा था। फिल्म था वाजीगर। कार्यक्रम का अगला गाना कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर के बोल हैं, आनंद मिलिंद का संगीत है और फिल्म है बारूद।

कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश कविता कृष्णमूर्ति मोहम्मद अजीज अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है बरसात की रात।

बरसात की रात के इसी गाना के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अगला प्रसारण विविध भारती से सुनेंगे आज के फनकार थोड़ी देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोली माँ तो कोई लोला भी कहता है।

लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम कैदी।

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेज और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी। और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी। और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

0: कि इस पुनर्नवा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हम सबकी तरफ से।
1: धन्यवाद।
0: मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हम सबको।
1: मेरा नाम डॉक्टर शशि किरण श्रीवास्तव है। मैं मध्य विद्यालय अमरा तालाब की सेवानिवृत्त शिक्षिका हूँ। मैं
0: जी
1: सासाराम महावीर स्थान वार्ड नंबर 12 में रहती हूँ।
0: जी आपने अपनी पढ़ाई लिखाई, आप एक शिक्षक रह चुकी हैं, एक शिक्षिका रह चुकी हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, अपनी शैक्षिक जर्नी के बारे में बताइए जरा।
1: मेरी हाई स्कूल तक की पढ़ाई रामा रानी जैन बालिका विद्यालय डेहरिया से हुई है।
0: जी
1: उसके बाद मैं 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण सासाराम से की। उसके बाद मैं रोहतास महिला महाविद्यालय सासाराम से IAS लेकर ऑनर्स तक की पढ़ाई की। फिर यहाँ MA नहीं रहने के कारण मुझे SP जैन कॉलेज से MA करना पड़ा। इसी बीच मैं निजी विद्यालय में नियुक्त हो चुकी थी। MA करने के बाद
0: जी
1: मेरी इच्छा हुई कि क्यों नहीं मैं अपनी योग्यता को बढ़ाऊं, जब मुझे इसी क्षेत्र में रहना है,
0: जी
1: तो मैं फिर PhD कर ली।
0: आपने PhD किया है मैम।
1: जी, उस समय मगध यूनिवर्सिटी था, लेकिन जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन करवाई, यार यूनिवर्सिटी जो है वो वीर कुंवर सिंह में बंट गया। तो मेरा MA तक की पढ़ाई तो मगध यूनिवर्सिटी से हुई। PhD की डिग्री जो है वह वीर कुंवर सिंह से हुई।
0: तो आपने PhD किस विषय से किया, शोध विषय आपका क्या था मैम?
1: सब्जेक्ट तो हिंदी था, शोध विषय था मैडम हिंदी शब्द चित्र और महादेवी वर्मा, एक
0: ओ,
1: विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन।
0: आपने हिंदी से इतने अच्छे विषय से आपने शोध किया। और मैम, पढ़ाई लिखाई के अलावा और कुछ रुचि थी, हॉबी थी जो आप करना पसंद करती थी?
1: मैडम हाई स्कूल तक तो मैं स्काउट गाइड एवं खेलकूद में हमेशा भाग लेती रही। स्काउट गाइड का ट्रेनिंग भी मैं ली। आगे जाने के बाद यह नहीं कर पाई।
0: बचपन में और स्कूलिंग जब तक आप की, तब तक आप खेल कूद में काफी एक्टिव थी।
1: जी हाँ, स्काउट गाइड का मुझे ट्रेनिंग भी था।
0: अरे वाह।
1: जी
0: और मैम, आपके समय में पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल था, और आज के दौर में आप क्या फर्क महसूस करती हैं, या शिक्षा और शिक्षक छात्र में क्या बदलाव आए हैं, इसके बारे में बताइए।
1: लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर ज्यादा बल नहीं दिया जाता था। आज तो माता पिता, अभिभावक, हमारी सरकार सभी लड़कियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सबको पढ़ाई के महत्व को समझा रहे हैं।
0: जी
1: लेकिन हमारे जमाने में पढ़े या नहीं पढ़े इस पे कोई ध्यान देने वाला नहीं था। अपनी इच्छा से ही पढ़ाई की
0: हाँ,
1: जाती थी।
0: या
1: यहाँ
0: बहुत
1: तक
0: कम पेरेंट्स होते थे जो लड़कियों को पढ़ाना चाहते थे।
1: जी बहुत कम सुविधा थी। उस समय लालटेन लैंप जला करके बैठ के पढ़ना पड़ता था।
0: आपके माता पिता सपोर्ट करते थे पढ़ाई लिखाई
1: जी हाँ,
0: में?
1: सपोर्ट किए तब तो मैं की,
0: जी
1: मेरे माता पिता की है,
0: जी
1: लेकिन उसी दौर में मेरी पढ़ाई हो गई।
0: आपका अपने छात्रों के साथ कैसा रिश्ता था, और एक शिक्षक और छात्र के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, क्या राय है?
1: शिक्षक और छात्र के साथ पवित्र और गहरा रिश्ता होना चाहिए,
0: जी
1: जो सिर्फ किताबी ज्ञान सीमित नहीं दे करके, बल्कि उसके विकास, सीखने और जीवन
0: जी
1: में सही दिशा दिखाने का काम करे,
0: हाँ, व्यवहारिक ज्ञान
1: व्यवहारिक
0: भी।
1: ज्ञान करे।
0: जी
1: शिक्षक क्या ही कर्तव्य होता है कि बच्चों को उस मार्ग पर ले जाए कि जो कि अपनी सही निर्णय ले सके।
0: ये तो बात है मैम, बिल्कुल सही बात आपने कही कि
1: शिक्षक और
0: शिक्षक।
1: छात्र के बीच का संबंध जो होता है विश्वास, सम्मान, संवाद पर आधारित होता है। यह महत्वपूर्ण रिश्ता है जो छात्र के शैक्षणिक और भावनात्मक विकास के लिए जरूरी है।
0: जी, और कहते हैं ना कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते, उनको जैसा
1: जी
0: चाहो वैसे उस तरीके का शेप दे दो,
1: हाँ,
0: वैसा घड़ा बना दो।
1: बच्चे जो हैं कच्ची मिट्टी हैं, उनको जिस तरह से समझाते हैं, ढालते हैं, वह उसी रूप में ढलते हैं। मैडम छोटे बच्चे जो होते हैं, यदि शिक्षक उनको जो बता देते हैं, घर के माता पिता अभिभावक जितना उसको कहते रह जाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करो, ये बच्चे नहीं मानते हैं। कहते हैं कि नहीं, हमारी मैडम, हमारे सर जो बताए हैं वही सही बताए हैं।
0: बहुत गहरा असर पड़ता है बच्चों के
1: जी
0: ऊपर,
1: हाँ
0: अपने टीचर का, शिक्षक का।
1: जी
0: जी हाँ मैम, फुर्सत के पलों में आप कौन कौन से काम करना पसंद करती हैं, मनोरंजन के लिए आप क्या सुनना देखना पसंद करती हैं, बताइए।
1: मैं तो ऐसे फुर्सत के समय में
0: जी जी
1: भजन वगैरह सुनना ज्यादा पसंद करती हूँ। ज्यादा ज्यादा समय अधिक रह गया तो मैं मानस लेकर के, आध्यात्मिक किताब लेकर के बैठ जाती हूँ पढ़ने को। यही मेरा समय।
0: जी और मैम, गाने वगैरह सुनती हैं? अपने दौर में कौन से सिंगर के गाने आपको पसंद थे, रेडियो सुनना अच्छा लगता है आपको?
1: मुझे लता ज्यादा गाना से इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ लता मंगेशकर का गाना, जैसे गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, इस तरह के
0: जी
1: गाना जो है
0: जी मैम को लता मंगेशकर जी के

0: शुरू से ही आप एक शिक्षक बनना चाहती थी या कुछ और बनने का इरादा?
1: इच्छा शुरू से ही शिक्षक बनने की थी,
0: जी
1: इसलिए मैं जैसे ही मैट्रिक की मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षक प्रशिक्षण दिलवा दिए। 2 वर्ष का ट्रेनिंग जो होता था शिक्षक
0: जी जी जी
1: का, वो भी मैं कर चुकी थी, लेकिन कहीं नहीं हो पाया विद्यालय में। तो
0: मतलब आप एक
1: मैं,
0: सरकारी शिक्षक बनना चाहती थी।
1: जी हाँ, तो मैं निजी विद्यालय में योगदान की। उसके बाद कुछ दिन करने के बाद फिर मुझे सरकारी संस्थान में योगदान हो गया, मिल चुका।
0: आपकी नियुक्ति सरकारी विद्यालय में हो गई।
1: जी
0: जी, और आपने मैम पीएचडी किया है तो
1: जी
0: जरूर आपकी कुछ और बड़ी ख्वाहिश रही होगी।
1: नहीं मैडम, मैं निजी विद्यालय में योगदान की थी, तो
0: आप टीचर रह चुकी हैं,
1: जी
0: सासाराम
1: हाँ,
0: डेयरी की।
1: डेहरी में भी, सासाराम में भी मैं डेहरी में
0: जी
1: रह चुकी हूँ। पहले मैं डेहरी में ही ज्वाइन की थी, वहां थी मैं, उसके बाद ट्रांसफर करके मैं सासाराम आदमापुर में आ गई।
0: जी
1: तो जब मैं निजी विद्यालय ज्वाइन कर ली मैडम, तो मुझे लगा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, तो क्यों नहीं मैं अपना योग्यता जो हो बढ़ा लूँ। आगे मैं यहाँ टीएट करके बच्चे हैं, मुझे आगे की अवसर मिलेगी। मुझे 2012 में सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई।
0: जी आप सरकारी विद्यालय की शिक्षिका बन गईं
1: जी
0: और अवकाश प्राप्ति तक आपने वहीं पे काम किया।
1: जी जी
0: जी मैम, हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, तो आप अपना रोल मॉडल किस में देखती थी? अपने टीचर में या माँ बाप में, या कोई कोई ऐसा जो आपको लग

0: कहूँ कि हाँ ये मेरा रोल मॉडल है, तो बताइए
1: सबसे पहले तो माता पिता का ही होता है,
0: जी।
1: जो कि पहला जो हमारे शिक्षक होते हैं हमारे माता पिता होते हैं
0: जी
1: घर में, उन्हीं से हमें जो संस्कार मिलता है उसको हम बाहर में ले जाते हैं और
0: हाँ, हम
1: हमारे
0: इस दुनिया में आते हैं, आंखें खोलते हैं तो पेरेंट्स की वजह से ही। तो आपके पहले रोल मॉडल आपके माता पिता हैं
1: जी हाँ।
0: जी, बहुत अच्छी बात मैम। मैम खाली समय में या जब आप छुट्टी में होती हैं तो कहीं घूमने फिरने जाने वगैरह का शौक है आपको? तो जब कहीं घूमने जाती हैं और सफर में रहती हैं तो क्या गुनगुनाना पसंद करती हैं आप? लता
1: कुछ
0: मंगेशकर जी
1: ऐसा
0: के कोई अच्छे सदाबहार गाने?
1: है हाँ, सदाबहार गाते हैं
0: जी। और आपको लता मंगेशकर जी के ही गाने पसंद है?

0: आपकी दिनचर्या क्या है? आप सेहतमंद रहने के लिए इस उम्र में आप क्या-क्या करती हैं? कैसी आपकी दिनचर्या रहती है बताइए।
1: सेहतमंद रहने के लिए या प्रातः काल सुबह में गर्मी के दिनों में 4 बजे, ठंड पड़ने लगी तो 5 साढ़े 5 बजे जगती हूँ। थोड़ा व्यायाम की, उसके बाद नित्य क्रिया से

0: होकर के ईश्वर स्मरण, हाँ घरेलू, फिर घरेलू कार्यों में लग जाना है, छोटे
1: फैमिली के
0: बच्चे,
1: साथ, बच्चों के
0: हाँ
1: साथ।
0: छोटे, हाँ जी हाँ छोटे बच्चे हैं, उनको देखना होता है, स्कूल वगैरह जाते हैं बच्चे, थोड़ा सा देखभाल उन लोगों को करना पड़ता है।
1: यानी कि आप जब एक टीचर थीं तब भी बच्चों का देखभाल करती थीं, और आप रिटायर्ड होने के बाद भी घर में बच्चों का देखभाल कर रही हैं, और यही आपके मन लगने का या एंटरटेनमेंट का एक अच्छा वो भी है, जरिया भी है। आपका
0: जी
1: अपना वक्त समय सब आप अपने बच्चों के ही इर्द गिर्द बिताती हैं।
0: जी
1: मैम, आपकी शादी कब हुई थी, और घर परिवार बच्चे या शिक्षण का कार्य आपने कैसे संभाला, कैसे तालमेल बिठाया या कैसे बैठाती थी आप?
0: मेरी शादी मैडम 1978 में हुई थी, और उस समय मेरे परिवार भी सहयोग किए, और परिवार के साथ साथ मेरे पति का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जो कि आगे बढ़ा है।
1: आपके पति बहुत सपोर्टिव थे,
0: जी हाँ,
1: तो आप घर परिवार और सब कैसे तालमेल बैठाती थी, थोड़ा
0: सबको
1: मुश्किल
0: मिला
1: तो
0: जुला
1: होता?
0: करके उसी में काम किया जाता था मैडम।
1: जी
0: सुबह में उठ करके नाश्ता ही बना देना ही करना, अपना थोड़ा सा करना ही पड़ता था,
1: जी हाँ, वो तो है ही।
0: बिना
1: और
0: मेहनत के सफलता तो मिलता नहीं है,
1: नहीं,
0: परिश्रम तो करनी पड़ती है।
1: जी मैम, अवकाश प्राप्ति के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं, उम्र के इस पड़ाव में क्या फील कर रही हैं?
0: अवकाश प्राप्ति के बाद आज मैं अपनी बीती समय को याद कर रही हूँ, जिस तरह से मैं अपने बच्चों का देखभाल करती थी, पालन पोषण करती थी, आज ठीक वही स्थिति मेरे साथ है। आज अपने नाती पोता का देखभाल कर रही हूँ, उन्हीं का पालन पोषण कर रही
1: यानी
0: हूँ।
1: कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं, अच्छा फील कर
0: हाँ
1: रही हैं।
0: बहुत अच्छा मुझे लग रहा है।
1: जी, जिस उम्र में जिस उसमें हम हैं उसको हम फील करें और अच्छा महसूस करें, तो यही जिंदगी की सच्चाई भी है।
0: जी
1: मैम, आप अपनी क्या संदेश देना चाहेंगी आज की लड़कियों को, जो विद्यार्थी हैं, छात्रा हैं, कि वो कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, कितना सुंदर अपना भविष्य बनाएं, आप क्या संदेश देना चाहेंगी उनको?
0: एक शिक्षक होने के नाते मैं विद्यार्थियों को संदेश देना चाहूंगी
1: जी
0: कि खुद पर विश्वास करें, छात्र जो होते हैं छात्र हैं,
1: जी
0: सकारात्मक सोच रखें, संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है,
1: जी
0: वे अपने को निर्बल न समझकर सब सबल समझें, और जो भी काम करना चाहते हैं उसमें तन्मयता से लगे रहें, कार्य करें, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
1: जी
0: रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कोई भी काम असंभव नहीं है, यदि हम उसमें लग जाएं जी जान से तो हम उसमें सफलता प्राप्त करते ही हैं।
1: एकदम सही कहा बात आपने मैम। मैम, आजकल जैसा कि आप देखती हैं कि कभी कभार या ऐसे ही सुनाई पड़ जाता है, अभी तो हमारे इस ग्रामीण परिवेश में नहीं है, लेकिन हाँ, न्यूज में हमको सुनने के लिए मिल जाता है कि माँ बाप को ले गए वृद्धाश्रम में डाल आए और वहीं छोड़ दिए, तो ये सुनने के बाद बड़ी पीड़ा महसूस होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
0: इस पे तो मैं यही कहना चाहूंगी, अपने माता पिता का संस्कार दिया हुआ है, आज हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें तो मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और किस कारण से मैम लोग ऐसा करते हैं, ऐसे केसेस क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में तो माता पिता को, गुरु को भगवान का दर्जा दिया हुआ है, और लोग उनका सेवा करना पुण्य समझते हैं, तो फिर ऐसा क्यों समाज में हो रहा है?
0: यह सीख खुद हम अपने बच्चों को नहीं दिए हैं, या हम अपने अगली पीढ़ी को, अपने सास ससुर को नहीं किए हैं, जो हमारे बच्चे देखे नहीं हैं।
1: कि आपने अपने सास ससुर का सेवा किया है, उनकी जिम्मेदारी संभाली है, तो आपके बच्चे अपने आप ये सीख जाएंगे कि हमको अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठानी है।
0: उठानी है, सेवा करनी है, किस तरह रहना है, ये संस्कार यदि हम खुद करेंगे, कुछ भी सिखलाने के लिए मुझे खुद करना पड़ता है,
1: हाँ, बच्चे खामोशी से सीख जाते
0: सीख
1: हैं।
0: जाते।
1: सच, बिल्कुल सही बात
0: यही कमी
1: आपने।
0: हमारे अंदर हो रहा है, हम खुद नहीं कर रहे हैं और अपनी बच्चों से अपेक्षा करेंगे तो यह संभव नहीं है।
1: बिल्कुल सही मैम, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मैम आप हमारे इस कार्यक्रम की हिस्सा बनी, अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ वक्त बिताई, आपने हमारे इस कार्यक्रम में अपने बारे में बहुत सारी जानकारियां हमसे साझा की, अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ बांटा। इसके लिए आपको हमारी तरफ से, समस्त सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से और समस्त आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के इस पुनर्नवा कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर शशि किरण श्रीवास्तव जी से, जो की

0: मध्य विद्यालय अमरा तालाब की शिक्षिका रह चुकी हैं। श्रोताओं, पुनर्नवा कार्यक्रम का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। किसी सम्मानीय वरिष्ठ जन के साथ अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो साथी विनीता सिंह को दीजिए अनुमति। साथियों नमस्कार। स्वर एवं संकलन विनीता सिंह,
1: प्रस्तुत करता संतोष कुमार।

अभी हमारे बुजुर्ग श्रोताओं का कार्यक्रम पुनर्रमा सुन रहे थे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब हम सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम लोक माधुरी का पहला गीत सुनेंगे भरत शर्मा व्यास की आवाज में। डॉक्टर राम रक्षा मिश्रा ने इस गीत को लिखा है और भरत शर्मा व्यास ने संगीत दिया है। एल्बम है राजा पियजनी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक माधुरी में एक खूबसूरत सा निर्गुण।

कार्यक्रम की अगली पेशकश मुन्ना सिंह की आवाज में। तोमर सत्येंद्र सिंह ने इस गीत को लिखा है, मुन्ना सिंह ने संगीत दिया है और एल्बम है आधी आधी रतिया के।

कार्यक्रम लोक माधुरी के आखिर में सुन लेते हैं एक और गीत स्नेहलता के आवाज में। इस पारंपरिक गीत को सुभाष कनौजिया ने संगीत दिया है। एल्बम है कमन रंग ननदी।

स्नेहलता के गाए इसी गीत के साथ ही भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी भाग एक अब यहीं संपन्न होता है। अब हम सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार। आरंभ में सुनते हैं तुलसीराज के गाए इस गीत को। अंगद चौहान ने इसे लिखा है, विजय गुड्डू ने संगीत दिया है, एल्बम है प्रीत के धागा नाजुक होला।

आपने सुना विनय विराट को, निकेश मिश्रा के लिखे गीत को सुमित द्विवेदी पवल ने संगीत दिया था। एल्बम था पल पल तोहरे ही याद सतावेला। कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं एक और गीत मुलायम यादव की आवाज में। तारकेश्वर मिश्रा राही ने इस गीत को लिखा है, संजय पांडे ने संगीत दिया है। एल्बम है देखत बाड़ा हाल सब।

यादव के गाए इसी भोजपुरी एल्बम सॉन्ग के साथ कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम लोक माधुरी का भाग दो। कलाकार हैं भरत शर्मा व्यास। चंद्रभूषण तिवारी के गीत को भरत शर्मा व्यास ने ही संगीत दिया है और एल्बम है आधी आधी रतिया के।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
1: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत श्रीमा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है। मेरा गाँव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है। एक काम है बुनके वही गली नली है, वहाँ पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे हैं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: कार्यक्रम लोक माधुरी के आखिर में सुन लेते हैं एक और गीत भरत शर्मा ब्यास के आवाज में। इस पारंपरिक गीत को भरत शर्मा ब्यास ने ही संगीत दिया है और एल्बम है करी हम कौन बहाना।

भरत शर्मा के गाए इसी लोकगीतों के साथ कार्यक्रम लोकमाधुरी अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर पूर्वाह्न के 11:00।

शेर पे मुकर्रर की आवाज आई तो वे शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस नगमे को, जिसे खयाम ने संगीतबद्ध किया और मधुकर राजस्थानी ने जिसे लिखा है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर।

0: राडी आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला नगमा सुधा मल्होत्रा की आवाज में। पीरजादा सफक लखनवी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने इस नगमे को संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत पंकज उदास और साथियों की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से जुड़ा हुआ यह गीत। आइए सुनते हैं अगला नगमा, यानी आज के कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी गीत है जिसे हमने चुना है वेलवेट वॉइस हरिहरन एल्बम से, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने और इसे लिखा है मुशीर ने। चलिए सुनते हैं ये नगमा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी ये उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी

0: दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे गीतबाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में साहिर लुधियानवी के बोल और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया ये और एक और गीत।

संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया ये और एक और गीत।

0: है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
3: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
2: सखी सहेली?
3: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
2: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।
5: और कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में और भी नगमे हम सजाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात।

है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और हमने आज की यादों की महफिल सजाई है गीता दत्त के द्वारा गाए हुए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं सुजाता फिल्म का यह गीत जिसे गाया है गीता दत्त ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और सचिन देव बर्मन ने इसे संगीत दिया है।

आइए सुनते हैं गीता दत्त के द्वारा गाया हुआ, जिसमें मोहम्मद रफी और साथियों ने उनका साथ दिया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हम सुन रहे थे आर पार फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज सजाई है यादों की महफिल गीता दत्त के गानों के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म सीआईडी का यह गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं ओपी नैयर और गाया है गीता दत्त ने।

हम सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में, कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला गीत, जो कि है 12 o'clock फिल्म से। गीता दत्त की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

मुझको ये भी पता।

हम सुन रहे थे ये गीत श्रीमती 420 फिल्म से गीता दत्त की आवाज में जानिसार अख्तर के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं एक और गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में गीता दत्त की आवाज में, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अनुभव फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है गुलजार ने, और कनू रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे साहेब बीबी और गुलाम फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और हेमंत कुमार के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत कागज के फूल फिल्म से गीता दत्त की आवाज में कैफी आजमी के बोल और सचिन देवर्मन का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा कुछ ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर, एक सफर जहां हम अपनी यादों को भी याद करते हैं और बड़े प्यारे से गीतों और जज्बातों के साथ बात करते हैं। आज सुरीला सफर की इबारत कुछ अलग तरीके से हम लिखकर लाए हैं और उस इबारत पर आप सभी ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और अब हम चलते हैं उस इबारत की ओर जो हमने आपको सौंपी थी। इबारत कुछ ऐसी है कि फिल्में बदलती हैं, किरदार बदलते हैं, मगर कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो समय नहीं इतिहास बन जाते हैं। और जब बात फैशन की हो तो हिंदी सिनेमा का जिक्र भला कैसे ना हो। दशकों से हमारी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वे ट्रेंड भी गढ़ती हैं, सपने भी बुनती हैं और अलमारियों का रंग रूप भी तय करती हैं। कभी अनारकली की अनारकली कुर्तियां दिलों पर राज करती हैं तो वक्त का हेयर कट युवाओं के आईने का सपना बन जाता है। ब्रह्मचारी की सादगी भरी साड़ी हो या बॉबी का चंचल पोल्का डॉट्स, हर दौर ने अपने हिस्से का एक फैशन इतिहास लिखा है। कुर्बानी के जंपसूट ने आत्मविश्वास को नया रूप दिया तो चांदनी के शिफॉन की साड़ियों ने हवाओं को भी रुमानी बना दिया। रंगीला का रंग हो या तेरे नाम के राधे का अंदाज, हर गली में उनकी झलक दिखाई देती थी। देवर की भाभी की बहन की बैंगनी साड़ी से लेकर जफी महक के बेफिक्र और सुकून भरे कपड़ों तक, फिल्मों ने हमारे वार्डरोब ही नहीं हमारी सोच को भी सजाया है। और फिर ये जवानी है दीवानी की साड़ियाँ जो आज भी अनगिनत अलमारियों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, वहीं डोला रे डोला की भव्य साड़ी, वह तो मानो हर फैशन प्रेमी के सपनों की अलमारी में टंगी हुई एक अधूरी ख्वाहिश है।

तो आइए यादों की इस रैंप वॉक में आप भी शामिल हो जाइए। बताइए कौन सा फिल्मी फैशन को अपनाया था आपने, कौन सा अंदाज आज भी आपके दिल के किसी भी कोने में सजा हुआ है। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर आप बहुत देर से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे इस बात की ख्वाहिश है, पर हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे श्रोता लिखते हैं, आज तो फैशन का जलवा ही है, शुरुआत से लेकर आज तक हर 20 साल बाद पलट कर आती है, तो हर चीज जो पुरानी फिल्मों में दिखाई देती थी आज वो ही चलन में है। बड़े प्रिंट वाले कपड़े, साड़ियाँ, बालों की भी वही फैशन, पर एक बात है, साड़ी नहीं बदलती, वो विभिन्नता लेकर आती है, पर कुछ साड़ियाँ राज्यानुसार वो की वो ही रहती हैं, जैसे महाराष्ट्र की पैठणी, नवारी, बंगाल की बंगाली, तमिल की कांजीवरम, गुजरात की बांधनी, और सभी परंपरागत रूप से बनकर आई हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कहती है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ में मौसम के फूल और पाठ बदलते हैं, उसी तरह फैशन के युग बदलते हैं, जमाना बदलता है, हालात बदलते हैं, साथ साथ इंसान के दिमाग और पहनावे में भी बदलाव आता जाता है। जी, हमारे एक श्रोता ने जानकारी दी है कि भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी, जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई और वर्ष 1931 में बनी आलमारा देश की पहली बोलती फिल्म थी। इस जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। वो कह रहे हैं कि फिल्मी फैशन को अपनाने की बात करें तो वो कहना चाहते हैं, माँ तो माँ होती है, बचपन में हम खार मुंबई में रहते थे, पूज्य माता जी जब भी लिंकिंग रोड के हेयर ड्रेसर के पास ले जाती थी तो कहती थी, बेटे के हेयर कट शशि कपूर जी के स्टाइल में कानों तक बड़े ही रखो। परंतु विवाह के बाद यानी शादी के बाद उनकी धर्मपत्नी ने डंडा दिखाकर उनका हेयर कट स्टाइल बॉर्डर फिल्म देखकर छोटे फौजी जैसे कटवा दिए हैं और कहती हैं कि अब ज़्यादा स्मार्ट लगने लगे हो। ये फैशन है जो बदलता रहता है। देखिए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फैशन के कपड़े सब हमारे सिनेमा जगत की देन है, ब्रह्मचारी की मुमताज की साड़ी, देवदास की माधुरी, ऐश्वर्या की ड्रेस, माधुरी के नए स्टाइल, दीदी तेरा देवर दीवाना, अनगिनत ड्रेस श्रृंखला हैं, और इन सब में वो कहते हैं कि राजेश खन्ना का स्टाइल नहीं भुला सकते। काफ़ी श्रोताओं ने बता दिए, तो गाने वो बता नहीं रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। हमारे श्रोताओं में बहुत सारे श्रोताओं ने एक बात ज़रूर कही है कि आज तो बातें महिलाओं की होंगी, हम पुरुष इसमें क्या करेंगे। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, हम महिलाओं का फैशन, अगर महिलाएं फैशन करती भी हैं तो आप पुरुषों के लिए ही तो करती हैं, सच समझ कर एक दूसरे के सामने ही तो जाते हैं। तो ये फैशन जो है जो बदलता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैशन केवल महिलाओं का बदला है, फैशन इंडस्ट्री में फैशन जो है फिल्मों के साथ बदला पुरुषों के लिए भी है। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, कल शायद कोई एक तरह का पैंट जो पुरुष पहना करते थे आज महिलाएं पहनकर घूम रही हैं। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं फैशन के, हम आज उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है तो ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा। और चलिए चलते हैं पहले गीत की तरफ, और पहले गीत में मेरा तो यही प्रश्न है कि ऐसा कौन सा स्टाइल है, फैशन स्टाइल जो आपने देखा था, मन में था कि ये पहनना है, लेकिन किसी ना किसी कारण से आज तक नहीं पहन पाए। हो सकता है वो पुरुषों का हो सकता है वो महिलाओं का हो, आप अपनी बात रखिए कि कोई एक स्टाइल होगी जो मन ने कहा था पहन लो, या मन ने कहा था ऐसे बाल कटा लो, या मन ने कहा था ये वाली अंगूठी, ये वाली चैन, या कुछ तो होगा जो मन में होगा, उस मन की बात को हमसे कह दीजिए और सुनिए ये वाला नगमा।

हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत जिसे हमने लिया मुगले आजम फिल्म से, और हमारे श्रोता ने सही कहा कि इसमें मधुबाला ने अनारकली सूट पहना हुआ है। लता मंगेशकर की आवाज़ और साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे इस गीत को। शकील बदायूं ने लिखा और नौशाद ने संगीत से सजाया। हम जो ये गीत सुन रहे थे, इस गीत में यानी इस फिल्म में मुगले आजम फिल्म की पोशाकें मक्खन लाल एंड कंपनी के द्वारा डिजाइन की गई थी। दिल्ली के कारीगरों ने इसे सिला था और इसके लिए जरदोजी जरी सूरत के विशेषज्ञों ने इसका काम किया था। मखमल रेशम ब्रोकेट जैसे महंगे और प्रामाणिक कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको बता दूं, पहले जो होता था कि कोई कंपनी वाले फिल्मों को डिज़ाइन करते थे, फिल्मों के कपड़ों को डिज़ाइन करते थे। अभी ड्रेस डिज़ाइनर का जो चलन था वो आया नहीं था फिल्मों में। कब आया था थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब चलते हैं हमारे श्रोताओं के मज़ेदार बातों की तरफ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक तारा बोले टुन टुन क्या कहे ये तुमसे, तंग पेंट पतली टांगे लगती हैं सिगरेट जैसे। उसके साथ ही लिखते हैं, भाभी की उंगली में हीरे का छल्ला, हीरे का छल्ला पहना बहुत दिन पहले बॉटम, आज साड़ी पहन शर्माई, बड़ी खूबसूरत सी बात वो लिख रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि हालांकि हमारे पुरुष श्रोताओं ने कहा कि इसमें हम क्या कमेंट करें, पर हमारे एक श्रोता ने बड़ी संजीदगी से बड़ा प्यारा कमेंट किया है। वो लिखते हैं कि प्राचीन काल में बिना ब्लाउज और पेटीकोट की साड़ी शरीर पर लपेटी जाती थी। हाँ, ये नौगजी साड़ी होती थी जिसे पूरे शरीर पर लपेटा जाता था, उसी से एक ब्लाउज नुमा एक तैयार कर लिया जाता था और वही पेटीकोट बन जाता था, वही साड़ी होती थी, एक ही साड़ी होती थी, एक ही कपड़ा होता था। उसके बाद फिर ब्रिटिश काल में ब्लाउज पेटीकोट का प्रचलन चालू हुआ। उसके बाद अब वो कहते हैं कि आजकल महिलाएं प्री ड्रेप्ड साड़ी, कैप स्टाइल, रफेल और जैकेट स्टाइल साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा साड़ी को बेल्ट के साथ पहनना भी एक बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, फैशन बदलता जा रहा है पर कपड़े तो लगभग वही हैं। तो इसके साथ साथ हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में महिलाओं के फैशन का नाम आते ही सबसे पहले उन्हें याद आती है साधना। अच्छा, माथे पर हल्की जुल्फें, फैशन कौन भूल सकता है। और इसके साथ ही वो बहुत सारी बातें इसमें लिखते हैं। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि फैशन का क्या कहना, हमारे हर जमाने में फिल्मी सितारों का फैशन देखते हुए अपनाया गया। मेरी मम्मी को नरगिस जैसी साड़ियां पहनने का शौक था और उन्हें, यानी वो लिखती हैं कि मुझे इंदिरा गांधी जी की साड़ी का स्टाइल पसंद है और आज भी उसी स्टाइल में साड़ी पहनती हूँ। क्या बात है, बढ़िया बात है, ऐसी फैशन ही तो हमें बनाता है, जोड़ता है किसी के साथ में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा बदली है वो फैशन है। आज स्कर्ट का कुर्ता तो कल स्कर्ट का, सही बात है, फैशन के पीछे पागल होते रहते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी बात कहती हैं, कहती हैं कि फैशन चाहे जितना बदले मगर मेरा तो मानना है कि फैशन कितना भी बदले आप वही पहने जो आप पर फबे फबे भी। और दूसरी बात ये भी होता है, एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, कैरी करना यानी संभाल पाना। हम जिस वस्त्र को अच्छे से संभाल सकें वो पहने तो कितना अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमने जो फैशन अपनाया वह अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर अपनाया, उनके बालों का हेयर स्टाइल, आधे कान ढके हुए और इस टाइप की कटिंग और पैंट में जो बेल बॉटम टाइप का था उसके नीचे काफ़ी फैला हुआ रहता था, पैंट की मोहरी ज़्यादा

बड़ी होती थी जी, वो फैशन बहुत चला और बहुत लोगों ने उसे अपनाया। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था बड़ा सरल सा कि आपको ऐसा कौन सा है स्टाइल जो पसंद आया था, पहन नहीं पाए। तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अच्छा, एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अनारकली अब फैशन में आई है नए कलर में, स्त्री वर्ग पहनती नहीं है, अब आम वर्ग में फैशन में इसे ज्यादा अपनाया है, ज्यादा मोटी स्त्री अपना पेट छुपा सकती है। नहीं देखिए क्या है, ये जो चीजें हैं जैसे अनारकली है वो बड़ा, अगर उसे हमारे कॉटन के कपड़ों में, सूती कपड़ों में बना लिया जाए तो कितना अच्छा होता है ना, पहनने में कितना सुकून मिलता है। इसके साथ हमारे श्रोता बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं फैशन के बारे में। और मुमताज जी दुपट्टा बालों में लगाती थी, वो उन्हें बहुत पसंद है, और पर ना बाल तब वैसे थे ना कॉपी करना आया, सो मन की बात मन में रह गई। मुमताज की अदायगी को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और ये अगला गीत है उसी हेयर स्टाइल को लेकर जो हेयर स्टाइल तब से लेकर आज तक फैशन में है। एक टाइम था जब ये आई थी और आज का वक्त है जब ये है, और इस स्टाइल को केवल इसलिए बनाया था क्योंकि माथा चौड़ा था अभिनेत्री का और माथा छुपाना था। चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम बता दीजिए।

हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में यह गीत साहिल लुधियानवी के शब्दों से सजा और संगीतकार रवि ने इसे संगीतबद्ध किया। और हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, और बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं इस गीत को सुनकर। हमें भी प्रसन्नता होती है जब आपके मन का कुछ हम सौंप पाते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत पसंद है ये गीत, और ये है वक्त फिल्म का खूबसूरत सा गीत। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें आप लिखते जा रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि दिल को छू लेने वाला ये गीत है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि साड़ी की फैशन रैपिंग सब चल रही है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि उन्हें पैंट पहनना अच्छा लगता है और स्पोर्ट्स लुक में दिखना अच्छा लगता है। तो बढ़िया बात है, अगर आपको स्वयं को उसमें देखकर अच्छा लगता है तो अवश्य वैसे दिखें। और हमारे श्रोताओं ने कहा कि एक श्रोता ने कहा कि फैशन तो रोज़ बदलते हैं, इसलिए इसमें ना ही फंसो तो अच्छा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये बात भी आपकी सही है कि वैसे जिसको जो अच्छा लगे सो वही करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं पहले फिल्मों में देखा है कि हीरोइन कुर्ता साइड से बंद होता था और टाइट भी बहुत होता था, और उनका बैक वाला हिस्सा अलग से दिखाई देता था। जी, ये फैशन का ट्रेंड बदलता जा रहा है। और यही फैशन वाली बात में हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं तो बचपन से बचपन तक फैशनेबल हूँ, चाहे कुछ भी हो। पिता की पहली संतान थी तो 70 के ज़माने में फ्रॉक वेल बॉटम दिखते थे। बचपन से लेकर 10वीं तक 12वीं तक फ्रॉक्स मिडी फ्रॉक्स पहने थे, साथ में को कलर की सैंडल गॉगल्स फ्रेम वाले अब तक नहीं छूटे, बस सैंडल छोड़ के पैर तोड़ने क्या इसलिए वो सैंडल नहीं पहनती, HMT टाइटन की घड़ी के साथ। अब बालों का बताएं रीना राय वाली स्टाइल अपनाई है, तो सामने के कटवा के कानों के पीछे रखवाए थे, बाबा के हाथ से कई बार मार भी खाई लेकिन फैशन नहीं छोड़ी, क्या बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा कि फैशन से याद आई 1983 में जितेंद्र श्रीदेवी की मवाली फिल्म आई थी, फिल्म देखी, उनके गाने की ड्रेस पसंद आई, अगली दीपावली पर वही ड्रेस अपनी दीदी को दिखाकर बनवा ली और इन्होंने उस ड्रेस को पहना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोता ने कहा कि अनारकली के बारे में वो लिखती हैं कि वार्डरोब भरा रहता है और शिफॉन और सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी कॉटन, क्या ये तो बात सही है कि अलग ही बात है। उन्हें घूंघट में फिल्म घूंघट की वीना रॉय की शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनती हैं जो इन्हें पसंद आ गई थी हमारी एक श्रोता को, और शादी के बाद उन्होंने वही साड़ी बाजार में दिख गई, झट से खरीद लिया और पहनकर सबको बताई कि घूंघट वाली ही वीना रॉय ने पहनी है। और रंगोली चित्रहार में उस गाने को देखती हैं तो उन्हें अपनी वो साड़ी याद आ जाती है, क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कस्बा नुमा शहर में रहते थे, महिलाएं आपस में मिलकर मैटनी शो फिल्म देखने जाया करती थी, बगल वाली एक मुंह बोली बुआ थी वह उनके साथ गई, साधना और अनीता का पहना हुआ घाघरा सेट अच्छा लगा, अब उसके डिजाइन को कैसे आंखों में बसा जाए, तो फिर से वह जुगाड़ करके लगातार 3 बार उस फिल्म को देखने गई, तब उन्हें डिजाइन ने एकदम से वही गरारा बनाया था अपने लिए, और जब कॉलेज पहनकर गई तो बड़ी फक्र से कहती थी यह मैंने महबूब की हीरोइन में जो पहनी है उसी को देखकर बनाया। बहुत बढ़िया बात है, यह भी अपने आप में प्यार है। और 10 साल पहले बहन की हेयर स्टाइल पापा ने चेंज करवाई थी और साधना कट करवाई थी, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। अब यही श्रोताओं की बातों के बीच में मुझे एक बात याद आती है कि एक बार पढ़ा था कहीं कि भानु अथैया जो थी वो भारत की सबसे पहली और प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और 1956 में आई गुरुदत्त की सुपरहिट फिल्म CID से उन्होंने शुरुआत की थी, और उन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1982-83 में, और उसके बाद 1973 में उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे कपड़े बनाए थे और डिज़ाइन किए थे। तो ये भानु अथैया जो थी इन्होंने ही 1968 में आई ब्रह्मचारी फिल्म की इस ड्रेस को बनाया था, यानी इस साड़ी को बनाया था जो गीत में हम देखने वाले हैं। अब आपसे मेरे पास से 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि अगला जो गीत है वो किस फिल्म का है, तो बस उस फिल्म का नाम बता दीजिएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, आप फटाक से पहचान जाएंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि एक पल के लिए आंख बंद कीजिए, आंख बंद कर ली

अब कौन सी हीरोइन दिखी है आपको, जरा उसका नाम लिख दीजिए। ये बात पुरुष और महिला दोनों श्रोताओं पर लागू होती है। कौन सी हीरोइन आपको दिखी जिस जो आपको बहुत पसंद है, जरा उसका नाम हमें लिख भेजिए। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस फिल्म का नाम।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों को, और हमने आपसे पूछा ये प्रश्न कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। हमारा गीत शुरू नहीं हुआ उसके पहले हमारे पास संदेश आ गया था कि ये बहुत बढ़िया गीत, ब्रह्मचारी फिल्म का यह गीत है, आपने पसंद किया। उसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि आँख बंद कीजिए और बताइए कौन सी हीरोइन दिखाई दे रही है। तो एक श्रोता तो लिखते हैं, मुझे हर हीरोइन की सूरतें एक जैसी सुंदर दिखती हैं। सही बात है, इसमें आपके घर में रहने वाली हीरोइन भी होनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, श्रीदेवी, मीना कुमारी, किसी को श्रीदेवी की ड्रेसेस याद आ गई, किसी को, अच्छा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बंद आँख से मैसेज कैसे लिखें, आँख खोलने के लिए तो कहीं, हाँ हाँ आप आँख खोल सकते हैं और आँख खोलकर संदेश भेज सकती हैं। इसके साथ ही बहुत सारे श्रोताओं को, किसी को साधना पसंद आई है, किसी को हेमा मालिनी, किसी की नज़रों में कृति सेनन भी है, वो कोई कहता है शिल्पा शेट्टी की फिटनेस जो है वो उन्हें प्रेरित कर रही है आँख बंद करने पर, किसी को मधुबाला दिखाई देती हैं, तो ब्रह्मचारी में मुमताज़ की साड़ी किसी को याद आ रही है, किसी को हरे रंग के दुपट्टे याद आ रहे हैं, तो किसी को कुछ नया बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है जो याद आ रहा है। देखिए ये जो बात है ना, ये बात हमें हमारे सेंसेस से जोड़ती है कि हमें किसका क्या पसंद आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बंगाली सीनियर सिटीजन अपने हर वैवाहिक सांस्कृतिक फंक्शन में धोती कुर्ता पहनते हैं। जी बिल्कुल, और उसका उसी का प्रयोग कई सारी फिल्मों में भी किया गया है, इस बात को हम मानते हैं। चुन्नी बाबू को ये याद कर रही हैं, जैकी श्रॉफ को उन धोती दुपट्टे के साथ में। हमारे श्रोता कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के कपड़ों की बहुत नकल करी है उन्होंने, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, हील वाले शूज़ और उन्हीं की तरह इतरा के चलना। अच्छा, और किसी ने लिखा है कि हमें तो काजोल याद आई देखकर। जी ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमें कब कौन कहाँ कैसे याद आता है। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कुछ और कि मेरे दोनों लड़कियां और पत्नी जब कभी बाहर घूमने जाती हैं तो सलवार सूट और जीन्स पहनाकर ले जाती हैं बेटियां माँ को, क्योंकि घूमने फिरने में आसानी होती है, बस और ट्रेन में चढ़ने उतरने में आसानी होती है, हालांकि वो घर पर तो साड़ी ही पहनती हैं। और हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं, लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझकर ड्रेस अलमारी के कोने में रख देते हैं, जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है, तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन कराकर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है आपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े, बोली, सब कुछ बदला हुआ दिखाई देता है, फैशन बदलता है, लोगों की संस्कृति, आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा, शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सच होते थे या विक पहनती थी, हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं, पर कौन जाने उनके जूड़े असली थे या वो बिक पहनती थी, ये बात तो हमें भी नहीं पता। पर चलिए, पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। तो अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। इसके गीतकार का नाम बता दीजिएगा, इस गीत के गीतकार कौन है, फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत है। और दूसरा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा दो प्रश्न आपको देती हूँ, दूसरा प्रश्न ये है कि आप घूमने तो गए होंगे, भारत की कई जगह पर घूमे भी होंगे, कहीं कश्मीर, कहीं मनाली या दक्षिण भारत में, या कहीं तो घूमे होंगे। जहां भी घूमने गए वहां पर सामान्यतः ऐसा होता है कि फोटोग्राफर कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं, उन्हें आप ऊपर से पहनते हैं, फिर आपकी एक फोटो खिंच जाती है और उसे यादों के तौर पर आप अपने पास सहेज कर रखते हैं, हुआ होगा ना। ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फोटो खिंचाई थी, भारत के या विदेश के कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहां की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो आपने, आपके परिवार में किसी ने, तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए अगले गीत के गीतकार कौन है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह

0: लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी। उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कैसी हूँ?

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ, और आप सबने सही पहचाना, आनंद बख्शी के बोल। अब एक रोचक जानकारी इस फिल्म को लेकर, इसकी ड्रेसेस को लेकर मिली कि इस फिल्म के जो कपड़े हैं, लुक्स हैं, उनको मुख्य रूप से राज कपूर ने खुद ने डिज़ाइन और स्टाइल किया था, पर इसमें इनका साथ करने वाले बिन रामानी, जिन्होंने वार्डरोब स्टाइल सजाई थी, सत्यवान और बीआर लक्ष्मण इसके टेलर थे, और उन्होंने पूरे इन ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग और कितनी सोच लगती है एक फिल्म की एक ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में, और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं। और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक सा था, कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या? तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गई थी, बहनों के साथ फोटो खिंचाई थी, वह उनके पास में है, कोई असम घूमने गया था तो फोटो खिंचाई थी, उसे संभाल कर रखा है, कश्मीरी लिबास में 300 रुपए के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है, और उन्होंने वहां जाकर फोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फोटो खिंचाई हमारे एक श्रोता ने, उनकी जेठानी, किसी की जेठानी कश्मीर गई थी तो वहां के कपड़े पहनकर उन्होंने फोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूलकर आ गई, जो कि उन्हें बाद में मिला नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रही हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते, बहू जापान गई थी तो वहां की पारंपरिक पोशाक किमोनो में फोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेख ने सायोनारा वाले इस गीत में पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, वो कहते हैं बॉबी के इस गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी, बहुत रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी, और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है, जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछ रहे थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फोटो खिंचाई है और किसी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो बताया बहुत सारी बातों को। उन्हें एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सल्यूट करने लग जाते हैं, क्या बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि डल झील में उन्होंने फोटो खिंचाई थी, और हमारी श्रोता बताती हैं बॉबी फिल्म का याना, इसकी ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी, नोट बैंक की टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे, और बड़े फोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इन श्रोताओं की इन उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हाँ, फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और स्कूल कॉलेज भी में भी बहुत फैशनेबल रहे हैं, वो बड़े बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरुजी से पिटाई भी होती थी। हाँ, वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरुजी पीटा करते थे, और हमारे गुरुजी तो कहते थे गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम, शायद आती होगी, इस बात से ऐसा हम मानकर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता, फैशन एक शब्द है, और उसके साथ में उनका, उन्होंने ब्लाउज की बड़ी अच्छी वो बताई है कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज अब फिर से आ गए हैं। हाँ, कॉलेज में पैरेलल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं, और रेखा की दो चोटी वाले बालों की स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। जी, इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं, जब रंगमंच में आप होते हैं या फिल्मों में होते हैं तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड क्या है। अब हम अगर अगली फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया है, और उन्होंने पहले जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है, और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी दिखाते हैं, तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत, बताइए इसके गायक कलाकार।

कौन है? और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी जिंदगी रह सकते हैं? सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए, तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम मिलता है, बताइएगा।

हम सुन रहे थे जब वी मेट फिल्म का यह गीत इरशाद कामिल के बोल प्रीतम के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा किसके गायक कलाकार कौन है, आपने सही पहचाना उस्ताद राशिद खान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है तो वो आप पहनते हैं। तो हमारी श्रोता लिखते हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते, हीरो जूते पहनते थे वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, जिप वाले जूते, हाँ एक चैन वाले जूते हुआ करते थे, अभी भी फैशन में है, लड़कियां पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है और उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता, बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ती प्लाजो को बोला। जब ही मैट में करीना कपूर ने पटियाला सूट पहना है जो देखते बनता है, जी बिल्कुल। कुछ हमारी एक और श्रोता लिखती है, कुछ कुछ होता मैं भी, काजोल ने शुरू में डंगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियां, मूड के मुताबिक उसको पहना गया था। जी बिल्कुल, यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफ़ेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत होता है ना पर ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला फैशन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया तो मैं क्षमा चाहूंगी, सुनते जाइए, ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कंफर्टेबल लगता है। जी बिल्कुल, हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद हैं, और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लुंगी अच्छी लगती है पहनने में, तो किसी ने बताया बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लेगिंग पसंद है, तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वहीं है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहाँ बहुत सारी फोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे एक समय था जब ग्राहक डिज़ाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिज़ाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे क्योंकि वो डिज़ाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे। जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था शायद, ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज की शाम के, आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है। और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए, चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियाँ थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियाँ। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइए।

और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम सुरीला सफ़र यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है। जी, हमने पूछा था कि इसके गीत संगीतकार कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये दोनों बातें आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिज़ाइन और इन सब की बात की। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी, और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए। तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारियाँ हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सदा मंगल हो। नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय चयन पर्षद आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जा रहा है। इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चला रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज भी 18 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत विभिन्न स्टेशनों के बीच चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त सूचना के अनुसार शाम 5 बजे सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बकचपरा गंगा घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान 5 युवतियां डूब गईं। इनमें से 3 युवतियों का शव बरामद किया गया है, वहीं अन्य 2 की तलाश की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। इधर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकारामपुर गंगा घाट पर डूबने से एक युवक की मौत हो गई। राजधानी पटना में गिग वर्कर्स के लिए अत्याधुनिक एसी लाउंज की सुविधा शुरू कर दी गई है। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने गांधी मैदान और आयकर गोलंबर के पास बनाए गए विशेष एसी लाउंज का निरीक्षण किया। लाउंज में शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग सहित विभिन्न सुविधाएं दी गई हैं। पटना देश का तीसरा शहर है जहां गिग वर्कर्स के लिए विशेष एसी लाउंज सुविधा विकसित की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के उत्तरी भागों में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की संभावना है। इधर राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अनेक स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने इन स्थानों पर अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रोहतास जिले के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीसैप परिसर में आज 1355 महिला सिपाहियों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया और नई जिम्मेदारी की शपथ ली। बीसैप 2 की समादेष्टा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। नालंदा, पटना और गोपालगंज जिला बल से संबद्ध इन महिला सिपाहियों ने सफल

0: पूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर जिम्मेदारी संभाल ली है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में आज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉड की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध कारोबार पर नियंत्रण के साथ ही नशे के विरुद्ध जागरूकता को लेकर चर्चा की गई। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल अंतर्गत हाथीदह और बेगूसराय स्टेशन के बीच राजेंद्र पुल पर आज सुबह ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार टूट जाने से रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। रेल अधिकारियों के अनुसार इसे ठीक कर लिया गया है और रेलखंड पर परिचालन बहाल हो गया है। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग पर पुलिस लाइन के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड आज रियासत में मुख्तलिफ मराकज पर बिहार पुलिस में सिपाही इम्तहान का इनेकाद कर रहा है। इम्तहान का इनेकाद दो नशस्तों में किया जा रहा है। इसे मद्देनज़र रखते हुए तहफ्फुज़ के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। सभी मराकज पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस दस्ता को तैनात किया गया है। इधर रेलवे उम्मीदवारों की सहूलत के लिए कई स्पेशल ट्रेन चला रहा है। मशरक़ी वस्त रेल के चीफ पब्लिक रिलेशन अफसर सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज 18 इम्तहान स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत मुख्तलिफ स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में आज रियासती काबीना का एक अहम इजलास मुनक़िद किया जाएगा। काबीना सेक्रेटरीट से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये इजलास शाम 5 बजे सेक्रेटरीट में वाक़े काबीना हॉल में होगा। इजलास में कई अहम तजावीज़ पर तबादले ख्याल की उम्मीद है। मुंगेर ज़िला के मुफस्सिल थाना हलका के तहत श्यामपुर बकचपरा गंगा घाट पर गंगा नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चियों की मौत डूबने से हो गई। इनमें से 3 बच्ची की लाश निकाली गई है, वहीं दीगर 2 की तलाश जारी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर जाए वकूफ पर कैंप कर रहे हैं। इधर मुफस्सिल थाना हलका के तहत टीका रामपुर गंगा घाट पर डूबने से एक नौजवान की मौत हो गई। राजधानी पटना में गिग वर्कर्स के लिए जदीद तरीन एसी लॉन्च की सहूलत शुरू हो गई है। वजीर शहरी तरक्यात व रहाइश नीतीश मिश्रा ने गांधी मैदान और इनकम टैक्स गोलंबर के करीब बनाए गए खसूसी एसी लॉन्च का जायजा लिया। लॉन्च में साफ पीने के पानी, मोबाइल चार्जिंग समेत कई सहूलतें दी गई हैं। पटना मुल्क का तीसरा शहर है जहाँ गिग वर्कर्स के लिए खसूसी एसी लॉन्च की सहूलत को फ़रोग दिया गया है। रियासत के शुमाली हिस्सों में मानसून की सरगर्मी से बारिश का दौर जारी है। महकमे मौसमियात ने आज मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया समेत रियासत के शुमाल मगरब और शुमाल वस्त हिस्सों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई मकामात पर बिजली गिरने का भी खदशा है। इधर रियासत के जनूब मगरब हिस्सों में सख्त गर्मी पड़ रही है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा समेत रियासत के जनूबी हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर लू की सूरत हाल बनी रहेगी। महकमा ने इन मकामात पर आइंदा 48 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक के इजाफा का इम्कान जाहिर किया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ रियासत का गर्म तरीन मकाम रहा। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतास जिला के डेहरी वाके बिहार स्पेशल मुसल्लह पुलिस बी सैप कैंपस में आज 1355 खवातीन सिपाहियों ने पासिंग आउट परेड में शिरकत की और नई जिम्मेदारी का हलफ लिया। बी सैप 2 की कमांडेंट और सीनियर आईपीएस अफसर लिपि सिंह ने परेड का मुआयना किया। नालंदा, पटना और गोपालगंज जिला फोर्स से मुतालिक इन खवातीन सिपाहियों ने कामयाबी के साथ तरबियत मुकम्मल करके जिम्मेदारी संभाल ली है। अररिया के जिला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन की सदारत में आज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का जिला सतह का जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में मनशियात की स्मगलिंग और उसके गैर कानूनी कारोबार पर काबू पाने के साथ साथ नशे के खिलाफ बेदारी के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर रेलवे डिवीजन के तहत हाथीदह और बेगूसराय स्टेशनों के दरमियान राजेंद्र पुल पर

0: आज सुबह ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार टूट जाने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। रेलवे हुकाम के मुताबिक इसे ठीक कर लिया गया है और रेल रूट पर आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। सुपौल जिला के सदर थाना इलाके के तहत सहरसा सुपौल मेन रोड पर पुलिस लाइन के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से एक किसान शदीद जख्मी हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। कर्मचारी

22 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के कुल 100 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, कंप्यूटर, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी में BE/BTEC उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 5 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम डेट 3 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bsnl.co.in से प्राप्त किया जा सकता है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई।
1: अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +989128101915। दूसरा नंबर है +989128101909। तीसरा नंबर +989128101902। और चौथा नंबर है +9899321793। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति

0: समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए लक्ष्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया

0: उसमें कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत जो

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में यह अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म नागमणि से। गीता दत्त की आवाज है, प्रदीप के पुल हैं और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे, उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून 4:00 सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम. सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं. संतान फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और दत्तराम के संगीत के साथ. और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है. आज्ञा दीजिए, सदा सुखी रहिए. नमस्कार.

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
1: और मंदाकिनी जोशी का
2: नमस्कार।
1: क्या कर रही हो सोनाली?
2: बैठी हुई हूं आपके सामने बैठी
1: भाई मेरे सामने तो बैठी हो, इन दिनों क्या कर रही हो मैंने ये जानना चाहा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
2: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
1: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली, हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
2: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी, कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे होंगे,
2: हमें सुन रहे हैं,
1: कुछ अचार भी डाल रहे हैं।
2: हाँ, हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं तो अचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही अपने टिफिन
2: में। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
1: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता
2: या
1: है?
2: फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
1: और या प्याज का सलाद खाना हो ना उसमें भी अचार डालकर
2: खा सकते हैं,
1: मस्त।
2: और साथ में मुरब्बे, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत, यानी उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते है, जो भी हर घर की शान होती
1: शान होते। तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिखकर भेज चुके होंगे
2: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है उस पर हमें लिखकर भेजिए।

0: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
1: शब्द हमारा, विचार आपके। इसमें विषय है संयम।
0: संयम,
1: जिसे कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
0: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली, हमारे सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहाँ कहाँ संयम खो दिया था
1: या फिर झुंझला उठे।
0: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
1: संयम टूट गया।
0: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
1: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं, ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, भाई क्या हो रहा है।
0: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती हैं उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें। संयम क्या है? हां, संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
1: और कब कब खो दिया संयम,
0: वो तो बताना ही है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों
1: भी है
0: ना।
1: जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में जानकारी।
0: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी, कर्नाटक,
1: नरम मुलायम, बहुत सुंदर।
0: तो सोनाली, इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे।
1: बिल्कुल खरीदेंगे, और इतने सुंदर कलर होते हैं इसकी इलकल साड़ी के।
0: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
1: बहुत ही ज्यादा। यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं और उसमें घंटों बाद, और फिर लोग मैसेज भी पढ़ते हैं किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उस पे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं। तो ये समय की बर्बादी ही है।
0: बिल्कुल, मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहां थोप देते हैं। और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
1: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त,
0: समय, और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद,
1: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
0: बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए।
1: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
0: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया।
1: सुनवा देते हैं।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती हैं।
1: हाँ वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे
0: भाई
1: भाई।
0: हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इलकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर खरीदना है,
1: खरीदनी पड़ेगी है ना।
0: बहुत सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है, हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है, और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है, और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी
1: मांग
0: मांग
1: हो गई है। बिल्कुल सही कहा, और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है, बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे तेनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग
0: अलग
1: बनाती
0: बनाती
1: है।
0: है। और पारंपरिक इलकल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है, और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी

0: उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इलकल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं। बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
2: और एक इलकल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इलकल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, इसमें पहनने की परंपरा रही है। और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
2: और आज इलकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
2: घर चल सके,
1: उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इलकल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा भी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है। और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है। और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
2: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए आप, तो आपको इलकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो, तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं को ऐसा लगता है कि भाई वक्त बहुत
1: ज्यादा लगता है,
2: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी 1-2 घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे, तो हम आराम से पहन के जा।
1: और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है।
2: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ, यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है
1: उतना ही समय लगता है, उसी तरह से पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ और
2: होता है ना।
1: चलिए तो गीत सुन ले,
2: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
1: तो ऐसी जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने, और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है।
0: बिल्कुल, एक पन दो कार है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं, और विचारों में आपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, की जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसी कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
0: हाँ, हाँ।
1: तो हम ये समय जो होता है

0: बहुत अनमोल होता है। तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद करते हैं।
1: बर्बाद कर देती है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
0: बहुत
1: है,
0: बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
1: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ,
0: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा, हाँ। रहूंगी, है ना।
1: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं
0: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत। ये बहुत गलत आदत है, आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए।
0: थोड़ा सोचे समझे, संयम से काम है।
1: हाँ वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
0: और मंदाकिनी जी एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है। बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
1: इस्तेमाल होने लगता है।
0: तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
1: जी,
0: की भाषा
1: उसे
0: का।
1: आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
0: ये सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
0: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
0: यानी पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में,
1: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताबें।
0: तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
1: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, तो उसका सदुपयोग करना,
0: उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा है, नहीं जो जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
1: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए
0: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
1: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
0: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना, मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है, मसलन हास्य व्यंग्य के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है।

0: एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है, और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है। हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है। ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे, जिससे हम कभी जानते ही नहीं। तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए? आप उनके पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है। मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, और सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझ कर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
1: वहीं एक साथ ही लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं, और अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली, जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि हाँ, जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
1: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
0: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है, जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में, विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में, अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को

0: लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
0: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती
1: क्या
0: है।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखती है कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती है। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत ना हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों और सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। आज
0: इस
1: नहीं
0: साल
1: तो कल,
0: नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी,
1: जिंदगी
0: और इतना सुंदर जीवन है मिला
1: उसको
0: है,
1: हम खत्म कर देते
0: जी। तो बच्चों को ये हमें कि और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते हैं। उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहें कि ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या दो चार दिन बाद लाकर
1: देंगे।
0: तो बचपन से ही उन्हें
1: ये संयम सिखाया जाए। दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना, कि आप अपने जीवन को ही समाप्त कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है, और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का। एक गाना सुनाना चाहिए।
0: सुना

0: मंदाकिनी जी, हमारे
1: जी
0: बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी आधा छोटा चम्मच, इलायची एक पाउडर छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और आधा कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बर्नी में रखे, इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ खाया जा
1: खा
0: सकता
1: सकती है। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है
0: कुछ मुरब्बे
1: ना।
0: और
1: हाँ,
0: अचार
1: यही बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही
0: है
1: है
0: और
1: ना,
0: एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं
1: सुन रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके
0: हाँ
1: बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी।
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं।

0: जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
4: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
3: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो वही एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक, स्वादानुसार चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है, साथ में 10-12। ठीक है। आम को तैयार करना है, कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गर्म किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
4: मेरे तो मुंह में पानी आ गया। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
3: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी है।
4: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची है। फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके। हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरें। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
3: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं बस। फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म कर लेते हैं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और इसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखाकर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
4: और अब क्या करना है?
3: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
4: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
3: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
1: जी। नमस्कार,
0: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
1: विविध भारती एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
0: संगीत सरिता
1: अभी भी आता है। उसमें हाँ उसको हम लोग बहुत सुना करते थे और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
0: जी जी, और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे मेरे ख्याल से, पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
1: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई
0: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ
1: जी। हाँ।
0: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 वर्ष की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को?
1: जी जी, जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप, किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
0: क्या बात है
1: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यहीं रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी

0: एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका
0: जी
1: हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में?
0: उस वक्त हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले,
1: जी,
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो
1: वाह,
0: बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी, तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो
1: वाह,
0: ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला
1: वाला है
0: देने
1: तो।
0: वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जो फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कंप्लीटली। और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बढ़िया।
0: मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले,
1: जी,
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे जांचने वाले थे उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करनी पड़ती
0: मैं
1: है?
0: तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपने जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं।

0: और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में,
1: जी
0: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या
1: जी
0: उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो

0: असली आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी, चित्र कला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: जी, और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।
2: वो शाम कुछ

0: देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था, और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है, और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना, और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा करके उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है, और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है। और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें, तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
1: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
0: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं। और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है। मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था, और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया, और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया, और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
0: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है, और मेरे लिए चमत्कार, आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था, और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
0: हाँ, तो मुझे मतलब रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया, और उस तरह से

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे

0: बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है। किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज़ अगर देखते हैं तो रोज़ आपको एक नए कुछ उसमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीज़ें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन,
1: मौसम फिल्म का गाना है।
0: जी हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया, और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं,
0: जी
1: जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ।
0: जी और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आए और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमंच शो था बंबई में, और जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चेस्टर हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे, जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे। तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे, और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूँ, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल
0: बिक
1: आउट
0: गया।
1: हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चेस्टर हविज आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ अमेरिकन कलेक्टर, और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी, तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक
0: जी
1: बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियां सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने।
1: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने, और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था, तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे।

गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई, और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया इंदौर।

0: उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ। और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सके, और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं, और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए हैं तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान

0: दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैं प्रेमा देवी, 10 ग्राम पंचायत राज मोतीपुर, प्रखंड रोसरा, जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर, अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लाइब्रेरी खोले हैं जिसका मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं भोजपुरी एल्बम गानों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब थोड़ी देर में हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: .3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
3: I also refer to the unwarranted
4: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
3: It has always been, is and will remain so.
2: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आज नई दिल्ली

0: में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और यूए के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 2029 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलो मादक पदार्थ आयात से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्रून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएमकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं तथा स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। खेदिन शिलेमा चानू कप्तान तथा निधि और एंगिल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 होते हुए हैं। सबसे पहले श्रोताओं, आइए एक नज़र डाल लेते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर में यानी कि 5:10 पर आप आनंद लेंगे। बेहतरीन भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा वंदन। शाम 5:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम में बेहतरीन लोकगीते। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। शास्त्रीय संगीत की मानव जीवन में उपयोगिता विषय पर आप सुनेंगे वार्ता। वार्ताकार होंगे कौशल किशोर पांडे। एक जानकारी के तहत आप जानेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विभूति पंकज पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के बारे में।

हमारे श्रोता आनंद ले सकेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत में शाम 6:40 पर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।

शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। इसके अंतर्गत हम आपको जानकारी देंगे आज कैमूर और रोहतास जिले की स्थानीय गतिविधियों के बारे में। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद।

8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय गायन पर आधारित कार्यक्रम सुर सौरभ का आनंद आप लेंगे रात्रि 9 बजे। कलाकार होंगे पंडित बीजी योगी और तबला पर संगत करेंगे कनाई दंत और आज का राग होगा जय जवंती। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी एल्बम गानों पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी।

अभी हम अपने श्रोताओं को जानकारी दे रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं कुछ बेहतरीन भक्ति गीत। पहला भक्ति गीत हमने लिया है दास पवन शर्मा की आवाज़ में।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं। और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आया तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संदेश। संदेश से पहले आपने सुना था तुलसी कुमार की आवाज में एक बेहतरीन भक्ति गीत। चलिए श्रोताओं, अब सुनते हैं सुशील चावला की आवाज में यह बेहतरीन भक्ति गीत, जिसे संगीत से सजाया है सुरेंद्र कोहली ने।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गाँव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गाँव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

तो श्रोताओं, संजय गिरी द्वारा गाए इसी भक्ति गीत के साथ है भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन में। आज आपसे बहुत सारी बातें करने आई है आपकी रेडियो सखी चंदा। सखियों, परिवार क्या होता है, उसके मायने क्या है, हम सब इससे भली भांति परिचित हैं। परिवार सभी लोगों को जोड़े रख

सकता है और दुख सुख में सभी एक दूसरे का साथ भी देते हैं। कहते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, परिवार से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ के आंचल से बड़ी कोई दुनिया नहीं, तो भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं होता और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इसलिए परिवार के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। कुल मिलाकर अगर हम समझ सकते हैं कि एक अच्छा परिवार बच्चे के चरित्र निर्माण से लेकर व्यक्तित्व की सफलता और खुशहाल समाज की पहचान है। सखियों, परिवार हमेशा आपसी सहयोग से ही तो बना होता है। संस्कार, मर्यादा, सम्मान, समर्पण, आदर, अनुशासन वगैरह वगैरह किसी भी सुखी, संपन्न एवं खुशहाल परिवार के गुण होते हैं। किसी भी सदस्य की पहचान उसके परिवार से ही तो होती है। एक अच्छा परिवार केवल खुशी के समय नहीं साथ होता, बल्कि मुश्किल समय में भी हर सदस्य का साथ निभाता है। चाहे वो आर्थिक समस्या हो, स्वास्थ्य की चिंता हो या मानसिक तनाव। सखियों, परिवार का समर्थन व्यक्ति को हर परिस्थिति से उबरने में मदद करता है। जी हाँ सखियों, परिवार सुरक्षा का वो घेरा होता है जो जीवन की कठिनाइयों को भी आसान बना देता है। समय के साथ परिवार की संरचना में भी बदलाव जरूर आया है, लेकिन कहते हैं ना कि पहले संयुक्त परिवार अधिक होते थे, लेकिन अब एकल परिवार का चलन बढ़ गया है। लेकिन परिवार की भावना यानी कि एक दूसरे के लिए समय और सहारा बरकरार रहे ना, तो परिवार सुदृढ़ रहेगा, या वो संयुक्त परिवार हो या फिर एकल परिवार। समाज में अपराध, हिंसा और असमानता जैसी समस्याएं स्वतः ही कम हो जाएंगी अगर ये परिवार के सहयोग से हो तो। सखियों, परिवार से लोगों से परिवार बनता है और परिवार से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व। इसलिए कहा भी जाता है कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। एक सुखी परिवार का आधार परिवार के सदस्यों के बीच खुला और ईमानदार संवाद भी है। अगर हमारे अंदर कोई समस्या है, अगर हमारे अंदर किसी तरह की बेचैनी है, अगर हम खुल करके उन बातों को अपने परिवार के सामने हम रखते हैं, तो हमारे अंदर का दर्द खत्म होता है और एक सुकून सा महसूस होता होगा। आपने ये ज़रूर नोटिस भी किया होगा। और सखियों, अगर हमारे अंदर कोई कहते हैं ना कि कोई एक कश्मकश चल रही होती है, तो हम अगर अपने परिवार के सामने अपनी बातों को रखते हैं तो स्वाभाविक है कि परिवार हमें समझेगा और उस समस्या का समाधान स्वतः ही निकल जाएगा। एक दूसरे के विचारों का सम्मान होना भी ज़रूरी है। भावनाओं और ज़रूरतों को समझना ये परिवार में ही संभव हो सकता है। आपसी समझबूझ से हर समस्या का निदान किया जा सकता है। सखियों, परिवार ही मनुष्य के जीवन की पहली पाठशाला है। सखियों, स्वस्थ परिवार से ही एक सुदृढ़, विकसित और कुशल समाज का निर्माण संभव है। इसलिए हमें अपने परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कारों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि वे एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है कि हम बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन काम की वजह से आजकल तो पेरेंट्स दोनों, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम करते हैं, घर से बाहर ऑफिस करते हैं, लेकिन बच्चों को वो समय नहीं दे पाते हैं। बच्चों को वो सारी सुविधाएं तो हम दे देते हैं, लेकिन जो एक होता है बच्चों के साथ बैठना, उठना, उन्हें समझना, उन्हें वो हर संस्कार देना, आज उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, जिसकी वजह से बच्चे भी थोड़ा पेरेंट्स से अलग रहना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि परिवार में बैठकर हम बच्चों को अपने उनके लिए कुछ पल ज़रूर निकालें। पहले तो अब तो एकल परिवार का समय हो गया है, लोग बहुत छोटे परिवार में रहना पसंद करते हैं, लेकिन सखियों आपने गौर किया होगा, जब एक संयुक्त परिवार होता था तो हम कहीं भी बाहर होते थे, लेकिन दादा दादी के पास बच्चे होते थे तो एक हमें सुकून होता था, हम रिलैक्स फील करते थे।

बच्चे बड़े बुजुर्ग के पास हैं, और बच्चे अपने दादा दादी से, नाना नानी से बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि उनका तजुर्बा काफ़ी होता है। सखियों, अंततः यह कहा जा सकता है कि अच्छा परिवार किसी भवन की नींव की तरह होता है, अदृश्य होता है लेकिन सबसे मजबूत होता है। हमें अपने परिवार को समय देना चाहिए, उसमें प्रेम और सहयोग बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत भी कर सकता है। तो सखियों, बातों का सिलसिला अब यहीं हम अपने बातों को थोड़ा विराम देते हैं, और आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित। हिंदुस्तान के सहयोग से परुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
6: गाँव बनेगा, देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे, उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था। उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
5: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
7: सखियों, खाना पकाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, बल्कि यह एक सुंदर कला है। इसमें स्वाद, सुगंध और पोषण का सही संतुलन बनाना जरूरी होता है। एक सफल गृहिणी वही है जो अलग अलग सामग्री को मिलाकर स्वादिष्ट और साथ ही स्वास्थ्यवर्धक भोजन तैयार कर सके, और ये तभी सफल माना जाता है जब खाने वाले के मुंह से तारीफ के दो शब्द ज़रूर निकले, है ना? उस समय तारीफ सुनकर कैसा लगता है भाई, हम सभी सखियों को पता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? सेहत के लिए सबसे अच्छा खाना घर का खाना माना जाता है और डॉक्टर की भी यही सलाह होती है, लेकिन कई बार लोग घर के खाने से भी बीमार पड़ जाते हैं। कई बार तो जल्दीबाजी की वजह से खाना बनाते समय गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से खाने के जो पोषक तत्व होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि भोजन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। भोजन बनाते समय स्वच्छता, सही पोषण और सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे। खाना बनाने से पहले हाथों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। आप किचन में जहाँ खाना बनाती हैं, वहाँ भी किचन की पूरी साफ सफाई खाना बनाने से पहले होनी चाहिए। साग सब्जियों को भी अच्छे से साफ सुथरा कर लें। अपने रसोई घर की स्वच्छता का खास ध्यान रखें। हमेशा ताज़ा और अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियों और मसालों का चयन कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब्जियों को ज़्यादा पकाने से उसके जो प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप खाने को ओवर कुक ना करें। और हाँ, खाना पकाते समय उचित तापमान पर ही पकाएं, क्योंकि सही तापमान पर खाना अच्छे से पकता है, सब्जियां भी जलती नहीं और खुशबू भी बरकरार रहती है। सखियों, मसालों की बड़ी भूमिका होती है खाने में। सही अनुपात में मसाले डाले जाने चाहिए। अगर मसाले अच्छे से ना भुने हों तो उसमें कच्चापन रह जाता है और स्वाद में भी कमी आ जाती है। इसलिए मसालों को अच्छे से भुनना ज़रूरी है और तेल भी सीमित मात्रा में होना चाहिए। कुछ मसाले ऐसे भी होते हैं जिन्हें खाना पकाने के अंत में डालना चाहिए, जैसे कि हम गरम मसाला की अगर बात करें, काली मिर्च की बात करें, तो खाना जब बन जाए तो उतारने गैस से उतारने से पहले आप उस

में डालिए और हल्का सा उसे गर्म हो जाए, तब उसे ढक के रहने दीजिए 5 मिनट तक कम से कम। खुशबू उसमें बरकरार रहेगी। सखियों, अगर इस तरह से अगर हम खाना पकाते हैं तो उसकी खुशबू और उसका स्वाद दो गुना बढ़ जाएगा। सखियों, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि खाना उतना ही पकाएं जितना कि एक बार में एक समय में ख़त्म हो जाए। हमेशा ताज़ा खाना खाने की कोशिश कीजिए। पके हुए खाने को बार बार गर्म करने से या बासी खाना खाने से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। बहुत सारी सखियाँ समय अभाव की वजह से आटे को लगाती हैं, आटा गूंथती हैं, तो वो सोचती हैं कि भाई अगर हम रात में आटा गूंथते हैं तो सुबह के लिए भी हम थोड़ा सा रख दें गूंथ करके, फ्रिज में वो स्टोर कर देती हैं और सवेरे फिर वही बनाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम अक्सर ये भी देखते हैं कि सवेरे का चावल सब्जी भी बना होता है तो वो फ्रिज में स्टोर कर देती हैं और उसे दोबारा गर्म करके वो रात के खाने में भी इस्तेमाल करती हैं। जबकि सखियों, इस तरह की नज़रअंदाजी आपके स्वास्थ्य पर बहुत काफ़ी असर कर सकती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। थोड़ा समय आप अपने किचन के लिए स्पेशली निकालें, अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें। अगर आप खाना पका रही हैं तो कोशिश कीजिए कि खाने को ढककर पकाएं। इससे पोषक तत्वों का नुकसान भी कम होगा और भोजन की जो पौष्टिकता है वो बनी रहेगी। खाना बनाने से पहले और खाना पकाने के बाद स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और सखियों, कहते हैं कि खाना पकाते समय गीत संगीत का आनंद लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम महिलाओं का काम होता है कि किचन में रिलैक्स अगर होना हो तो गीत संगीत होना ज़रूरी है। खाना बनाते समय गीत संगीत सुनना और भी तड़के जैसा काम करता है ना? अक्सर हम गृहिणियाँ खाना बनाते समय म्यूज़िक ना हो, ऐसा भला हो सकता है? तो चलिए, आइए संगीत की दुनिया में हम आपको लेकर चलते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणा

0: दायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उससे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: सखियों, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से उन योजनाओं के बारे में अवगत कराएं जिससे आप लाभान्वित हो। तो आइए एक ऐसी योजना के बारे में हम बातचीत करते हैं, नव भारत शिक्षा कार्यक्रम। जी हां सखियों, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षर लोगों को पढ़ना लिखना और गणना करना सिखाना है। इस कार्यक्रम को उल्लास यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है और इसमें स्वयं सेवकों की मदद से लोगों को शिक्षित भी किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल और व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। सखियों, शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। जब देश का हर नागरिक शिक्षित होगा तभी एक मजबूत, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव होगा। इसलिए हमें भी इस अभियान में सहयोग करना चाहिए और दूसरों को भी शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। सखियों, शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यह केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती बल्कि व्यक्ति के विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व का भी विकास करती है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सही और गलत में अंतर करना भी सीख पाता है और अपने जीवन को सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ाता है। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती है और उसे आत्मनिर्भर भी बनाती है। शिक्षित व्यक्ति समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षा से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और जीवन स्तर में सुधार होता है। यह व्यक्ति में आत्मविश्वास, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना का भी विकास करती है। शिक्षा एक सभ्य और प्रगतिशील समाज की नींव है। सखियों, शिक्षित समाज में जागरूकता, समानता और सामाजिक सद्भाव अधिक होता है। शिक्षा अंधविश्वास, अशिक्षा और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भी सहायता करती है। तो सखियों, कोशिश कीजिए कि अगर आपके आसपास भी कोई अगर निरक्षर व्यक्ति है या कोई महिला है तो आप उसे जरूर अपनी मदद से उसे शिक्षित कीजिए। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। अब अपनी रेडियो सखी चंदा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए लेते हैं आनंद एक बेहतरीन भोजपुरी लोकगीत का। कलाकार हैं भरत सिंह भारती और उनके साथी।

0: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।
1: भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे।

प्रणाम। ई आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रउआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय ले भोजपुरी में समाचार सुनी। केंद्रीय चयन सरसद आज पूरा प्रदेश में अलग अलग केंद्र पर बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती परीक्षा दू पाली में आयोजित कैलस। एकरा के लेके सुरक्षा के तगड़ा इंतजाम कल गई। सब केंद्र पर मजिस्ट्रेट के देखरेख में पुलिस बल तैनात कल गई। एने रेलवे परीक्षार्थी लोगन के सुविधा खातिर कई गो स्पेशल ट्रेन चला रहल बा। राज्य सरकार हर महीना के आखिरी इतवार के पंचायत विकास दिवस मनावे के फैसला कैले बिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिला की एगो चुनल गेल पंचायत से 28 जून के एक कार्यक्रम की शुरुआत करी हैं। एकर मकसद गांव के विकास योजना के समीक्षा कैल और आम लोगन के भागीदारी से पंचायतन के लगातार और पूरा विकास के बढ़ावा देवल बा। कार्यक्रम के निमन तरीका से आयोजन खातिर सब जिलन के जरूरी निर्देश जारी कर दिया गेल बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की एगो जरूरी बैठक कल गई। मंत्रिमंडल सचिवालय से मिलल जानकारी के मुताबिक सांझ के 5 बजे सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में ई बैठक भइल। बैठक में कई गो अहम प्रस्ताव पर चर्चा भी कल गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहले बाड़े कि राज्य में कानूनन के राजबा। श्री तिवारी कहनी कि भोजपुर मुठभेड़ मामला

0: में न्यायिक जांच के आदेश दिहल गइल बा और शुरुआती जांच में लापरवाही सोझा आइला पर पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई कैल गइल बा। श्री तिवारी कहने कि विपक्ष के मुद्दा पर राजनीतिक छोड़ के जांच रिपोर्ट के इंतजार करे के चाही। एने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी कहले बाड़े कि हाल ही में भइल मुठभेड़ के सब मामलन के जांच होखे के चाही। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल कहले बाड़े कि राज्य में भू सुधार के काम जारी रही। वहां के कहनी कि सरकारी जमीन के हर हाल में अतिक्रमण से मुक्त करावल जाए। श्री जायसवाल आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करत बतौले कि पीर 35 पावर प्लांट, CNLU, निफ्ट और सुपौल व्यवहार न्यायालय समेत अलग अलग जगहन पर निर्माण काम खातिर जमीन उपलब्ध करा दिया गया बा। वहां के कहनी कि भूमि प्रबंधन के और पारदर्शित बनावत एकर लाभ हर आदमी तक पहुंचावे के काम कैल जा रहल बा। राजधानी पटना में गीग वर्कर्स खातिर अत्याधुनिक AC लाउंज के सुविधा शुरू हो गई बा। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा गांधी मैदान और आयकर गोलंबर के लगे बनावल गए विशेष AC लाउंज के जायजा लिहले। लाउंज में साफ पिए के पानी, मोबाइल चार्जिंग समेत कई गो सुविधा दिहल गई बा। पटना देश के तीसरा ऐसा शहर बा जहां गिग वर्कर्स खातिर विशेष AC लाउंज के सुविधा तैयार कल गई बा। प्रदेश के उत्तर हिस्सा में मानसून के सक्रियता से वर्षा के दौर जारी बा। मौसम विभाग आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य इलाका में आंधी पानी के अलर्ट जारी कैले बा। इस दौरान कई जगह पर वज्रपात की आशंका भी बा। एने भोजपुर, रोहतास, कैमूर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सा में कड़ाके के गर्मी पड़ रहल बा। रोहतास जिला के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस BSF परिसर में आज 1355 महिला सिपाही लोग पासिंग आउट परेड में शामिल भेली और नया जिम्मेदारी के साथ शपथ लिहली। BSF 2 के समादिष्टा और वरिष्ठ IPS अधिकारी लिपि सिंह परेड के निरीक्षण कैली। नालंदा, पटना और गोपालगंज जिला बल से जुड़ल ई महिला सिपाही लोग सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरा करके अपन जिम्मेवारी संभाली। राज्य में तेज गर्मी के देखत सासाराम रांची इंटरसिटी समेत कई गो ट्रेनन के 28 जून तक रद्द कर दिया गया बा। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजा समाप्त भेल।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम सुनने वाला सभी श्रोता भाई बहन लोग के पंचों भाई के प्रणाम। श्रोता सभे, गर्मी के प्रकोप तो लगातार बढ़त जा रहा बा। हर वर्ष तापमान जवन बा उ नया रिकॉर्ड बना रहा बा। भीषण गर्मी आ लू के प्रभाव खाली मनुष्य पर ही ना, बल्कि पशु पक्षी, खेती किसानी आ पर्यावरण पर भी पड़ रहा बा। गर्मी के मौसम में तेज धूप आ अत्यधिक तापमान के चलते लोगन के अनेक समस्या के सामना करे के पड़ रहा बा। एमे लू लगना, शरीर में पानी के कमी हो जाना, चक्कर आना, सिर दर्द, थकान, ऐसन समस्या आम हो जाला। छोट बच्चन के, बुजुर्ग लोग

के आ बीमार लोग पर एकर प्रभाव अधिक पड़ेला। कई बार अत्यधिक गर्मी जानलेवा भी साबित हो सकेला, कहे कि गर्मी के असर तत्काल पड़ जाला। आ हमने के शरीर पर ही ना कृषि क्षेत्र पर भी पड़ेला। खेतन में नमी कम हो जाला, फसलन के वृद्धि प्रभावित होला, सिंचाई के जरूरत ज़्यादे हो जाला, पशुअन के भी चारा आ पानी के कमी के सामना करे के पड़ेला, तालाब कुआं आ नदियन के जलस्तर घटे लागेला, ऐसे जल संकट गंभीर हो जाला। तो हमनी के एकरा समाधान खातिर मिल के प्रयास करे के होई, अधिक से अधिक

नदियन के जलस्तर घटे लागेला, तो ऐसे जल संकट गंभीर हो जाला। तो हमनी के एकरा समाधान खातिर मिल के प्रयास करे के होई, अधिक से अधिक पौधारोपण, जल संरक्षण आ पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हमने के ए समस्या के कम कर सकेले जाए। जरूर हमने के प्रकृति के रक्षा करे के चाहिए, पेड़ लगाई ओकर रक्षा करी, पानी बचाई आ पर्यावरण के स्वच्छ रखे खातिर प्रयास करी, ताकि आवे वाला पीढ़ी के एगो सुरक्षित आ स्वस्थ वातावरण मिल सके। कार्यक्रम में आगे बढ़ल जाओ, ओसे पहले जान लिया जाओ कि और का का जानकारी हमने के मिले वाला बा। तो सबसे पहले चर्चा हुई कूटनीति के क्षेत्र में बढ़ रहल महिला लोग के बारे में, काहे कि कूटनीति के क्षेत्र में बढ़ रहल महिला लोग के आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। एकरा बाद कार्यक्रम में मन मनसाइन खातिर आज लोकगीत के आनंद लिया जाए प्रभा कुमारी से। आज के वार्ता में कौशल किशोर पांडे से सुनल जाए मानव जीवन में शास्त्रीय संगीत के उपयोगिता के बारे में। आ आज एगो जानकारी में बतकही हुई भारतीय शास्त्रीय संगीत के विभूति पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के बारे में, आज उनकर जयंती भी है। आ अंत में जायजा लिहल जाए मौसम पूर्वानुमान के। लेकिन पहले बतियावल जाओ कूटनीति के क्षेत्र में बढ़ रहल महिला लोग के बारे में। देखी आज जौन दिवस है वो प्रतिवर्ष 24 जून के मनावल जाला, आ एकर उद्देश्य विश्व भर में कूटनीति आ विदेश नीति के क्षेत्र में महिला लोग के बढ़त भागीदारी, उनका योगदान आ उनका उपलब्धि के सम्मानित करना बा। कूटनीति कौनो भी राष्ट्र के विदेश नीति के महत्वपूर्ण अंग होला। एकरा माध्यम से देश आपसी संबंधन के मजबूत बनावेला, शांति स्थापित करेला, व्यापार के बढ़ावा देला आ अंतर्राष्ट्रीय समस्या के समाधान खोजेला। लंबा समय तक ई क्षेत्र मुख्य रूप से पुरुष के प्रभाव में रहे, लेकिन समय के साथ महिला लोग भी अपना प्रतिभा, बुद्धिमता आ नेतृत्व क्षमता के बल पर एक क्षेत्र में अपन मजबूत पहचान बना ले ली। आज महिला लोग राजदूत, उच्चायुक्त, विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख आ शांति वार्ताकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल बड़ी। उ लोग ही साबित कर देले बा कि कूटनीति खाली एगो शक्ति के ना, बल्कि संवाद, समझ, धैर्य आ सहयोग के भी क्षेत्र है। महिला लोग में ये सब गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान होला, जवन कि उ लोग के एगो सफल राजनयिक बने में सहायता करेला। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में शांति या विकास के लक्ष्य के प्राप्त करे खातिर महिला लोग के समान भागीदारी जरूरी बा। जब निर्णय लेवे के प्रक्रिया में महिला लोग के उचित स्थान मिलता, तो नीति अधिक समावेशी आ प्रभावी बनता। महिला लोग के भागीदारी से शांति समझौता अधिक टिकाऊ आ सफल सिद्ध होता। हमनी के देश भी ए दिशा में निरंतर प्रगति कर रहल बा। भारतीय विदेश सेवा में महिला लोग के संख्या बढ़ रहल बा। भारतीय महिला राजनयिक विश्व के अनेक देशन में भारत के प्रतिनिधित्व कर रहल बाड़ी आ अपना कार्य से देश के गौरव बढ़ा रहल बाड़ी। उ लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के संस्कृति, मूल्य आ हित के प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कैले बा। हालांकि आज भी बहुत सारा चुनौती मौजूद बा। अनेक देशन में महिला लोग के नेतृत्व के कम अवसर मिलेला। कई बार सामाजिक पूर्वाग्रह, पारिवारिक जिम्मेदारी आ लैंगिक भेदभाव उनका प्रगति में बाधा बनेला। ऐसे जरूरी बा कि सरकार, संस्था आ समाज ये सब मिलकर एगो ऐसा वातावरण तैयार करे जहां महिला लोग के समान अवसर

सम्मान प्राप्त हो सके। ये दिवस हमने के ई संदेश देता है कि प्रतिभा आ क्षमता के कोनो लिंग ना होला। यदि महिला लोग के समान अवसर दिहल जाओ तो उ हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकतारी। हमने के अपना बेटियन के शिक्षा, आत्मविश्वास आ नेतृत्व के अवसर देवे के चाही, ताकि उ देश में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकस। तो आज जब दुनिया अनेक चुनौती जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक संघर्ष, आर्थिक समानता आ मानवाधिकारण के मुद्दा के सामना कर रहल बा, तब महिला लोग के भागीदारी और महत्वपूर्ण हो जा रहल बा। उ लोग के दूरदर्शिता, संवेदनशीलता आ सहयोगात्मक दृष्टिकोण वैश्विक समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेला। तो श्रोता सभे, कार्यक्रम में बत कही और हुई, लेकिन अब कुछ मन मनसाइल जरूरी लगता, तो सुनल जाओ एगो गीत प्रभा कुमारी से।

0: तो देखी श्रोता सभे ए गीत के बाद अब हमने के जानल जाई कि शास्त्रीय संगीत के मानव जीवन में का उपयोगिता बा। वार्ताकार बणन कौशल किशोर पांडे, तो आई सुनल जा।
1: सृष्टि के स्वर्णिम विहान से लेकर प्रलय की काली संध्या तक संगीत का अस्तित्व स्वीकार करना ही पड़ता है। मानव जीवन ग्रंथ के पृष्ठों को कहीं से भी पलट के देखा जाए तो कोई भी अध्याय ऐसा नहीं जिसे संगीत से शून्य कह दिया जाए। बोलचाल की भाषा में संगीत से केवल गायन समझा जाता था, किंतु भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत के महान संगीतज्ञ पंडित सारंगदेव द्वारा रचित पुस्तक संगीत रत्नाकर में स्पष्ट लिखा गया है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन वादन एवं नृत्य इन तीनों का सम्मिलित रूप ही संगीत कहलाता है। संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर एवं लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कला की श्रेणी में 5 ललित कलाएं आती हैं: संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला। इन ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में नियमों का पालन अनिवार्य होता है। स्वर, लय, तालबद्ध होना, राग के अनुकूल स्वरों का प्रयोग करना, गाने बजाने में क्रम होना, आलाप तान, बोलतान, सरगम आदि के तैयारी और स्पष्ट उच्चारण करना आदि शास्त्रीय संगीत के मुख्य नियम हैं। इन्हें मानते हुए आनंद की सृष्टि करना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उद्देश्य है। सबसे मुख्य बात यह है कि शास्त्रीय संगीत की उचित प्रशंसा करने के लिए संगीत का थोड़ा बहुत ज्ञान परमावश्यक है। हम चाहें उसकी बारीकियों को न समझें, किंतु कम से कम इतना तो ज्ञान आवश्यक है कि आलाप तान होती है क्या, शास्त्रीय संगीत में इसका क्या महत्व है। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्राचीन काल में जाति, प्रबंध, रूपक आदि गाए जाते थे। इनके बाद ध्रुपद गायन का प्रचलन हुआ, पर आज ख्याल गायन प्रचार में है। कुछ लोग इसे पक्का गाना अर्थात क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं। शास्त्रीय संगीत के सरलीकरण की दृष्टि से ठुमरी, टप्पा, दादरा, गजल, भजन आदि गायन शैलियों को वर्तमान में अर्धशास्त्रीय, उपशास्त्रीय या सेमी क्लासिकल म्यूजिक की संज्ञा दी जाती है। ये गायन शैली राग रागनियों में निबद्ध होते हुए भी कुछ अंशों में सरल संगीत का आनंद प्रदान करती है। भारतीय मानव जीवन में 16 संस्कार माने जाते हैं, यथा नामकरण, कर्णच्छेदन, मुंडन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, पाणिग्रहण संस्कार इत्यादि। इनमें से प्रत्येक का प्रारंभ एवं अंत संगीत से ही प्रारंभ होता है। ऐसा कोई त्यौहार नहीं है जहां संगीत न हो, बल्कि संगीत के बिना त्यौहार अधूरा रह जाता है। शास्त्रीय संगीत एवं मानव जीवन में अन्योन्याश्रय संबंध है। संगीतज्ञों द्वारा प्रत्येक त्यौहार या अवसर पर जो गीत की रचना की गई वह सभी राग समय चक्र एवं विशिष्ट राग के अंतर्गत हुई।

यही कारण है कि उसका प्रभाव सर्वव्यापी होता है तथा कभी नष्ट नहीं होता है। गाँवों में गाए जाने वाले गीतों के विभिन्न प्रकार यथा कपड़े धोते समय के गीत, भीमकाय पाषाणों के ऊपर चढ़ते समय श्रमिकों का गाना, खेतों में पानी देते समय, फसल बोने के समय में या फसल काटने के क्रम में किसानों द्वारा गाए जाने वाले गीत, पशु चराते समय गीत, यह साबित करता है कि मानव जीवन और संगीत का घनिष्ठ संबंध है। पावस की लाजवंती संध्याओं को श्वेत श्याम मेघमालाओं से प्रस्फुटित नन्ही नन्ही बूंदों का रिमझिम राग सुनते ही कोयल कुक उठती है, पपीहे गा उठते हैं, मोर नाचने लगते हैं तथा मंजीरे बोल उठते हैं। लहलहाते हरे भरे खेतों को देखकर कृषक आनंद विभोर हो जाते हैं और अनायास ही आलाप का उच्चारण होने लगता है, मानो वह राग देश का या मल्हार अंग का बोल हो। जीवन पथ के किसी भी मोड़ पर रुक कर देखा जाए तो वहीं आपको संगीत की ध्वनि गुंजायमान मिलेगी। दुख से, सुख से, रुदन से, हास्य से, योग से, वियोग से, मृत्यु से, जीवन से, सारांश यह है कि जीवन के प्रत्येक अवस्था में ये न के न प्रकारे न संगीत की कड़ी जुड़ी रहती है। युद्ध के मोर्चों पर उत्साह वृद्धि के लिए वर्तमान युग में भी विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के सैनिक विभिन्न प्रकार के संगीत का ही प्रयोग करते हैं। अट्टहास करती हुई मृत्यु के उस विभत्स वातावरण में सैनिकों के मस्तिष्क का संतुलन ठीक रखने एवं गगन भेदी तोपों के भयावने गर्जन में कर्तव्य की कसौटी पर खड़े उतरने की शक्ति संगीत ही प्रदान करता है। संगीत केवल विनोद की वस्तु नहीं बल्कि ऐसा चिरस्थायी आनंद है जिसमें हमें आत्म सुख मिलता है। अतः संगीत भक्ति का अभिन्न अंग रहा है। जितने भी उच्च कोटि के भक्त हुए सभी संगीत के ज्ञाता एवं परम साधक थे। भारत का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सूर, तुलसी, मीरा आदि का नाम न सुना हो। उनके प्रत्येक पद में ऐसा भाव है कि मनुष्य आनंद विभोर हो जाता है। इन महान विभूतियों की जितनी भी पद रचना है वह सभी तालबद्ध एवं रागबद्ध है। यही कारण है कि युगों युगों तक इनके रचना का प्रभाव सर्वव्यापी है और रहेगा। प्रसन्नता की बात है कि आजकल विश्व के कुछ विशेषज्ञ एवं डॉक्टर शास्त्रीय संगीत के रहस्यपूर्ण तथ्यों के अनुसंधान में लगे हैं। इनके परीक्षणों में अनेक ऐसी चमत्कारपूर्ण बातें सामने आई है जिनके द्वारा अनुसंधानकर्ताओं का उत्साह बढ़ता ही चला जा रहा है। मानसिक रोगों पर पक्षाघात एवं अनिद्रा आदि बीमारियों में भारतीय शास्त्रीय संगीत के उपयुक्त रागों का प्रभाव वर्णनातीत है। हमारे मानव जीवन के लिए संगीतज्ञों ने 24 घंटों में 8 प्रहरों की रचना की, यथा पहला प्रातःकालीन संधि प्रकाश प्रहर जिसका समय है 4 से 7 बजे सुबह, दूसरा प्रातःकालीन प्रथम प्रहर जिसका समय है 7 से 10 बजे सुबह, तीसरा दिन का द्वितीय प्रहर 10 से 1 बजे तक, चौथा दिन का तृतीय प्रहर 1 से 4 बजे तक, पांचवा सायंकालीन संधि प्रकाश प्रहर 4 से 7 बजे तक, छठा रात्रि का प्रथम प्रहर 7 से 10 बजे, सातवां रात्रि का द्वितीय प्रहर 10 से 1 बजे रात्रि, आठवां रात्रि का तृतीय प्रहर 1 से 4 बजे रात्रि। तात्पर्य यह है कि संगीतज्ञों ने रागों के विशिष्ट प्रभाव के लिए 8 प्रहरों का निर्माण किया। उपयुक्त राग समय चक्र में अगर राग को गाया जाए तो उसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। जैसे राग भैरवी, भैरव, आनंद भैरव, कालिंगड़ा आदि रागों को प्रातःकालीन संधि प्रकाश प्रहर अर्थात 4 से 7 बजे सुबह गाया जाए तो राग का वास्तविक स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार कुछ मौसमी राग भी होते हैं, जैसे वर्षा ऋतु के राग, राग मल्हार, सुर मल्हार, राग देश, मेघ इत्यादि, शरद ऋतु के राग, राग श्री, राग मालकोस, बसंत ऋतु के राग, राग बसंत बहार, हिंडोल, शिशिर ऋतु के राग, होली के समय राग काफी, वर्षा ऋतु के राग, राग देश का हम लोग व्यवहारिक रूप में देखें।

0: भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वेदा नाम साम वेदोस्मि, अर्थात वेदों में मैं साम वेद हूँ। नारद जी के प्रश्न पूछे जाने पर भगवान आप कहाँ निवास करते हैं, भगवान ने बताया कि नाहम वसामि वैकुंठम, नाहम वसामि योगिनम हृदयम च, मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठ नारद। अर्थात हे नारद, ना मैं वैकुंठ में ना मैं योगी के हृदय में निवास करता हूँ, बल्कि मेरे भक्त जहाँ गायन करते हैं वहीं मैं निवास करता हूँ।
1: देखें श्रोता सभी, शास्त्रीय संगीत के मानव जीवन में कितना उपयोगिता बा, एकरा बारे में कितना बढ़िया से आ फरिया फरिया के बतौलन कौशल किशोर पांडे जी, ये खातिर इनका के बहुत बहुत धन्यवाद। आ शास्त्रीय संगीत के बात चल बा तो हमने के आगे भी ये बारे में कुछ जानकारी लिहल जाए, लेकिन वो से पहले सुन लिया जाए कुछ संदेश।
2: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता आ सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार,
2: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
3: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान,
2: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
3: डायल करें 8700014242।
2: नंबर फिर लिखी 8700014242।
1: श्रोता सभी, बात जब शास्त्रीय संगीत के चलल बा तो आज हमने के एगो ऐसन विभूति के बारे में बतियावल जाई जिनकर आजे जन्मतिथि है। 24 जून 1897 के उनकर जन्म भइल रहे, उहवन पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में बड़ा सम्मान आ श्रद्धा के साथ लिया जाला। उ खाली एगो महान गायक ही नहीं खन ना रहन, बल्कि संगीत के जन जन तक पहुँचावे वाला शिक्षक, शोधकर्ता आ सांस्कृतिक दूत भी रहन। उनका गायकी में स्वर के मधुरता

भाव के गहराई आ आध्यात्मिकता के अद्भुत समन्वय देखे के मिलेला। बचपन से ही वो संगीत में रुचि रखत रहन आ बड़ा कठिन परिस्थिति के बावजूद उ संगीत साधना के अपन जीवन बनौले रहन। उ महान संगीताचार्य विष्णु दिगंबर पलुस्कर के मार्गदर्शन में संगीत के शिक्षा प्राप्त कैले रहन आ आगे चल के भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख स्तंभ में शामिल भेलन। उनका गायकी के सबसे बड़ विशेषता ई रहे कि वो खाली राग प्रस्तुत ना करत रहन बल्कि वह में भावना के ऐसन संचार कर देत रहन कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जात रहन। उनका आवाज में अद्भुत शक्ति आ संवेदनशीलता रहे। संगीत के ईश्वर के आराधना आ आत्मा के अभिव्यक्ति मानत रहन। तो आज उनका जन्म दिवस पर हमने के याद कैले जा। अब आई मौसम के भी जायजा ले लिया जाओ। भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 जून तक जिला में हीट वेव यानी लू चले के संभावना बा। एकरा बाद जिला के एक दो स्थान पर मेघ गर्जन के साथ हल्का वर्षा होखे के संभावना बा। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत आ दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान के अवधि में 5 से 10 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चले के अनुमान बा। अब हमने के कार्यक्रम के आज के समय ओरा गइल। एक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहन संतोष कुमार। तो चलत चलत ले पंचू भाई के तरफ से सभी श्रोता भाई बहन लोग के राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं कुछ बेहतरीन भोजपुरी फिल्मी गीत। कार्यक्रम है सांझ गीत। सांझ गीत कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है उदित नारायण की आवाज़ में। विनय विहारी के शब्द हैं, संगीत दिया है दुर्गा नटराज ने और फिल्म का नाम है दुल्हा बाबू।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म दुल्हा बाबू का यह बेहतरीन भोजपुरी गीत थे। आवाज थी उदित नारायण के, शब्द थे विनय बिहारी के और संगीत दिया था दुर्गा नटराज ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म में बलमा बड़ा नादान से कल्पना पटवारी की आवाज़ है और संगीत निर्देशन है सुजीत कुमार का।

0: श्रोताओं, भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत में अभी आपने सुना कल्पना पटवारी की आवाज़ में फिल्म बर्मा बड़ा नादान फिल्म का यह बेहतरीन गीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। श्रोताओं, सांझ गीत कार्यक्रम का शेष गाने अब आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देहियों के बुलंदियन के पांख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
1: ता बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
0: संगीत कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म में अमर सुहागिन का यह गीत। इसे त्रिपाठी के शब्द हैं और संगीत निर्देशन है राम मूर्ति चतुर्थ।

अब श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म में गंगा किनारे मोरा गांव से उषा मंगेशकर की आवाज़ है, शब्द हैं लक्ष्मण शाहबादी के और संगीत दिया है चित्र गुप्त ने।

तो श्रोता उषा मंगेशकर द्वारा गाए इसी गीत के साथ है आज का भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
1: पूरे बिहार के लोग, जी हाँ, पूरे बिहार के लोग जो हमारा ये कार्यक्रम पैरा मेडिकल है पारस सुन रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। इस कार्यक्रम में साथियों आपका सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम वर्षों से चल रहा है, चल ही नहीं रहा, आपका मार्गदर्शन भी कर रहा है, खास करके वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है और हेल्थ के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने जब आपके राजेश के साथ इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी तो ये बताना महज काम था कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में आप अपना करियर अगर जो आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ गुजरते वक्त ने इसके अनेकों आयाम खोल दिए, आज बीएससी नर्सिंग है, बीएससी पैथोलॉजी है, बीएससी ओटी है, पैरामेडिकल में जो है अलग अलग कोर्सेज हैं, इवन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, जीएनएम है, एएनएम है, ढेर सारे कोर्सेज हैं जिसको लेकर अगर आपने पढ़ाई की तो आपके लिए रोजगार के अवसर सुलभ हो जाएंगे। और इसमें हम यानी श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल वाले लोग और आपका राजेश मिलकर आप तक सही और सटीक बातें पहुंचाने का कोशिश करता है, प्रयास करता है और एक नंबर भी देता है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगे तो निश्चित रूप से आप उस नंबर का इस्तेमाल कीजिए, बात कीजिए। नंबर नोट कीजिए पहले, 9155588889555588888 और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233।

0: ये नंबर है, इस पर आप जानकारियां ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट दिया था, मेडिकल पढ़ने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए या कर गए, हाँ कर गए, और किसी कारण से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया ना, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था और सुविधाएं भी हैं। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो पटना के जक्कनपुर इलाके में है, पुलिस स्टेशन जो है जक्कनपुर का, उसके ठीक सामने है। तो चलिए विस्तार से एक बार फिर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि किस विषय पर आज बात करेंगे। हम लगातार वैसे विषय पर लगातार बात करते हैं जो बहुत वाइब्रेंट होता है, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब किस मुद्दे पर बात करनी है।
1: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
0: हाँ।
1: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता
0: है, जानकारियों का ही अभाव है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
0: जी
1: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
0: जी।
1: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
0: जी।
1: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
0: जी एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
1: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
0: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक और बढ़ ही रही है।
0: हाँ हाँ।
1: मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
0: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
1: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
0: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा, यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं।
0: जी।
1: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
0: हाँ।
1: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
0: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए, जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
1: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गया, गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है।
0: जी।
1: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि

0: आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहाँ तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है। तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहाँ से होंगे।
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहाँ पर फिजियोथेरेपी की जवाब से आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है।
0: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी।
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर NP प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
0: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
0: 2023 से
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल, मैं तो पहले ही इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर है, तो हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा
1: हाँ।
0: उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
1: कहीं
0: उसकी इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह हैं, डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी।

0: नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी। इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
1: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है। अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
0: क्या पढ़ाई होती है?
1: दोनों में सब कुछ सामान्य है। हाँ। सब कुछ समान है। हाँ। उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं। उसमें ऐड क्या हो गया इसको समझिए। ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
0: अच्छा,
1: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना
0: देना, ऑक्यूपेशन व्यवसाय
1: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
0: जॉब ओरिएंटेशन,
1: जिसमें उसकी रुचि है।

0: कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
0: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
1: ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन व्यवसाय
0: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन,
0: हाँ, जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपसे बातें होंगी अगले एपिसोड में। तो बिहार वालों, हाँ युवा साथियों, कुछ समझ में आया, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं पूरे बिहार से, ज्यादातर सुपौल, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, इन जगहों से फोन कॉल आते हैं। हालांकि ज्यादातर फोन कॉल ऐसे होते हैं जो सलाह मांगते हैं कि हमें किस ओर जाना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपकी रुचि जिस ओर जाइए आपके लिए एक उन्नत भविष्य होगा। मन लगाकर पढ़िए, पैरामेडिकल को चुनिए। नंबर नोट कीजिए 9155558888 9155558888, और दूसरा नंबर 9162413233। जी हाँ, थैंक यू श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। तो साथियों चुनिएगा जरूर, आपके लिए बुधवार को आते हैं और आपका साथ मिला तो आते ही रहेंगे। तो राजेश को दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले आइए हम एक नज़र डालते हैं कैमूर और रोहतास ज़िले की आज की स्थानीय गतिविधियों पर। सबसे पहले कैमूर ज़िले की गतिविधियां। कैमूर में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा आयोजित मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त माहौल में सम्पन्न हो गया। कैमूर ज़िले में आज आयोजित केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा आयोजित मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। जिला मुख्यालय भभुआ के कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। भभुआ अनुमंडल में कुल 6281 परीक्षार्थियों की परीक्षा निर्धारित थी, जिसमें प्रथम पाली में कुल 1507 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और कुल 4774 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में कुल 1507 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी एवं कुल 4774 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए व्यापक एवं सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। श्रोताओं, आज कैमूर जिले की सामान्य बैठक जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में मां मुंडेश्वरी सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष, सभी जिला परिषद सदस्य, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले के विकास कार्यों, ग्रामीण सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मनरेगा, स्वच्छता तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं एवं विकास संबंधी सुझावों को रखा गया, जिस पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों को लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक समयबद्ध ढंग से पहुंचाने का निर्देश दिया गया। साथ ही विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी पर विशेष बल दिया गया।

भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए कैमूर जिले के सभी विद्यालयों में 30 जून तक शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी कैमूर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कक्षा 12 तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर 30 जून 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में कक्षा 5 तक के विद्यालयों को बंद रखने तथा कक्षा 6 से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को सीमित अवधि तक संचालित करने का निर्देश दिया गया था, किंतु जिले में अत्यधिक तापमान एवं लू की स्थिति के लगातार बने रहने तथा आगामी दिनों में इसके जारी रहने की संभावनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार 25 जून 2026 से 30 जून 2026 तक जिले के सभी विद्यालयों में कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूरी तरह स्थगित रहेगी। हालांकि इस अवधि में सरकारी विद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मी नामांकन, प्रशासनिक कार्यों एवं अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों के निष्पादन के लिए विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को अनावश्यक रूप से धूप एवं गर्मी के संपर्क में आने से बचाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं तथा लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाएं। श्रोताओं, जिला पदाधिकारी रोहतास की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित DRDA सभागार में उद्योग वार्ता एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें रोहतास जिला के स्टार्टअप, SIP, PM, EGP, PM, FME तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के उद्यमियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त के अतिरिक्त सभी बैंकों के अधिकारियों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि बबल कश्यप, पुनीत अग्रवाल, DDM नवार्ड तथा उद्योग वार्ता में शामिल कमेटी के सभी पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित सभी उद्यमियों से बारी बारी से परिचय लिया तथा उनकी समस्या को बारीकी से गौर किया तथा उसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित उद्यमियों द्वारा पूंजी की कमी, विद्युत आपूर्ति की समस्या, वियाडा क्षेत्र में नेटवर्क का अभाव आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक रोहतास को निर्देश दिया गया वे CGTMSE योजना अंतर्गत कोलेट्रॉल सिक्योरिटी के द्वारा उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में बताया गया कि केंद्रीय बजट में CGTMSE के तहत 10 करोड़ तक ऋण सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बैठक में विद्युत तथा बियाडा क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या के संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी उद्यमियों को आश्वस्त किया गया वे इस समस्या का शीघ्र ही निदान करेंगे। श्रोताओं, मुहर्रम पर्व 2026 के अवसर पर शांति व्यवस्था तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सासाराम अनुमंडल के सासाराम नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थलों पर कुल 130 पदाधिकारियों तथा 130 पुलिस पदाधिकारियों की 2 शिफ्टों में प्रतिनियुक्ति की गई। साथ ही सशस्त्र बल एवं पुलिस केंद्र से लाठी बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, जबकि सासाराम अनुमंडल के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न स्थलों पर 143 दंडाधिकारी तथा 143 पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। साथ ही सशस्त्र बल एवं पुलिस केंद्र में लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न चिन्हित स्थलों पर 147 दंडाधिकारी तथा 147 पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति एवं विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न चिन्हित स्थलों पर 103 दंडाधिकारी तथा 103 पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही सशस्त्र बल एवं पुलिस केंद्र से लाठी बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। सासाराम शहर में जुलूस समाप्ति तक के 12 वरीय दंडाधिकारी एवं 8 पुलिस पदाधिकारी 3 शिफ्टों में पालीवार वाहन से गश्ती करेंगे। 6 बाइक गश्ती दल चिन्हित इलाकों में लगातार भ्रमणशील रहेंगे। बैठक में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया

गया यह निर्देश कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर निकलने वाले जुलूस को थाना द्वारा वेरीफाई रूट के रास्ते से ही जुलूस निकाला जाए, इसे सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही ताजिया की ऊंचाई को भी आकलन करना है। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र के अति संवेदनशील तथा संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करते हुए लगातार आम सूचनाओं का संग्रहण करें। उन्होंने कहा कि धार्मिक संगठनों तथा धर्म के नाम पर अफवाह, द्वेष, नफरत तथा गलतफहमी फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करें। हर संभव तत्परता एवं मुस्तैदी के साथ आसूचनाओं को एकत्रित करें ताकि विधि व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रहे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सभी थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी अपने अपने क्षेत्रों में विश्वसनीय माध्यम के जरिए गुप्त सूचनाएं एकत्रित करेंगे एवं स्वयं भी भ्रमणशील होकर स्थिति का पूर्ण जायजा लेंगे। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का हमारा यह गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाज़त रवि भूषण को। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। प्रदेश के सभी पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 जून को करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य भर में केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। और मौसम विभाग ने पटना, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 5 जिलों में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, नवादा में SA विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में सीत योग विश्वविद्यालय और सीवान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन को मंजूरी दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुई कथित पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी है। कैबिनेट में राज्य में विकसित भारत जीरामजी योजना की निगरानी के लिए बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के पुनर्गठन और गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने हर महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की एक चयनित पंचायत से 28 जून को इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा और जन भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के सतत और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य में भूमि सुधार का कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। श्री जायसवाल ने आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पीरपैंती पावर प्लांट, CNLU, निफ्ट और सुपौल व्यवहार न्यायालय समेत विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि भूमि प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाते हुए इसका लाभ जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
1: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में भूमि प्रबंधन एवं

0: राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और जनोन्मुख बनाने के दिशा में विभिन्न सेवाओं, योजनाओं एवं प्रक्रियाओं को व्यापक एवं क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवा का विस्तार, विशेष सर्वेक्षण, भूमि विवाद के त्वरित निपटारे और भूमिहीन परिवार को पुनर्वास जैसे क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।
1: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य में कानून का शासन है। श्री तिवारी ने कहा कि भोजपुर मुठभेड़ मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। श्री तिवारी ने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।
2: बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जिन जिन चीजों का डिमांड जहाँ जहाँ से आया वो सब चीजों को उन्होंने देखते हुए न्यायिक जांच की भी घोषणा की। पहले पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया, अब डीएसपी को भी हटा दिया। और दूसरी बात कि जब न्यायिक जांच की घोषणा हो गई तो इंतजार सबको करने हैं कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट क्या आ रही, और एक बार जब रिपोर्ट आएगी तो दोषी पे कार्रवाई होगी।
1: इधर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि हाल में हुए सभी मुठभेड़ के मामलों की जांच होनी चाहिए।
3: जब से सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार बना है तो खास करके इनकाउंटर का मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है और सब जगह ढूंढ ढूंढ के इनकाउंटर किया जा रहा है। सरासर गलत है, इस पे विशेष इंक्वायरी होना चाहिए, जांच होना चाहिए।
1: आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ और सुखाड़ की संभावित स्थिति को लेकर सतर्क है। पटना स्थित जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सदा ने कहा कि विभागीय अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले 3 महीने में राज्य के प्रत्येक प्रखंड में 3 पंचायतों को बाल श्रम मुक्त बनाया जाएगा। श्री प्रसाद आज पटना स्थित नियोजन भवन में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नए कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है।
4: आज हम सब लोग मिलकर एक और निर्णय ले रहे हैं कि आगामी 3 महीने के अंदर प्रत्येक प्रखंड के 3-3 पंचायत को हम बाल श्रम मुक्त करेंगे पूरी तरह से, और वहां शपथ कराएंगे कि अब इस पंचायत में कोई बाल श्रमिक नहीं है। और ऐसे जब हम धीरे धीरे करेंगे तो पूरा राज्य बाल श्रम मुक्त हो जाएगा।
1: केंद्रीय चयन परिषद की बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया गया, इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। इधर रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज भी कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज 18 विशेष परीक्षा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत विभिन्न स्टेशनों के बीच चलाई जा रही हैं। रेलवे ने अभ्यर्थियों से इन ट्रेनों की परिचालन समय की सटीक जानकारी लेकर इस सुविधा का उपयोग करने की अपील की है। अररिया जिले के सभी 16 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हो गई। जिलाधिकारी विनोद दुहन ने दोनों पालियों के दौरान विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। इधर राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि बक्सर, भोजपुर, पटना

0: नालंदा समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अनेक स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी।
1: दिनांक 25 जून राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के विभिन्न भागों में मुहर्रम पर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख 26 जून को यौमे आशूरा मनाया जाएगा। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों ने आज फ्लैग मार्च किया है। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद समेत विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जा रही है। हमारे रोहतास संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सासाराम में जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इधर शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद और पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने आज मुहर्रम के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। कटिहार जिले के कोलासी ओपी थाना क्षेत्र के मधुरा गांव में एक दुकान के सामने कोल्ड ड्रिंक के कैरेट से 5 देसी बम बरामद किए गए हैं। बम मिलने की सूचना के बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बकचपरा गंगा घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान 5 युवतियां डूब गईं। इनमें से 3 युवतियों का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं अन्य 2 की तलाश जारी है। इधर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकारामपुर गंगा घाट पर डूबने से एक युवक की मौत हो गई। विशेष निगरानी इकाई ने चर्चित टेंडर घोटाला मामले में मास्टरमाइंड ऋषु श्री समेत 7 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। एडीजी निगरानी पंकज दराद ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि निगरानी इकाई के पास इन सभी के खिलाफ ठोस और वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद हैं, जो समय आने पर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने आजमनगर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार ठाकुर को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है। आरोपी का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स 2026 के लिए बिहार के 2 पैरा एथलीटों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। नालंदा के झंडू कुमार और गया के सोमन राणा 23 जुलाई से 3 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों खिलाड़ियों के चयन से राज्य में खुशी और गर्व का माहौल है। राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए इस वर्ष 2 अक्टूबर से दिसंबर तक राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पटना में खेल विभाग के निदेशक आरिफ अहसन ने जिला खेल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने यह जानकारी दी। रोहतास जिले के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीसैप परिसर में आज 1355 महिला सिपाहियों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया और नए जिम्मेदारी की शपथ ली। बीसेप 2 की समादेष्टा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। नालंदा, पटना और गोपालगंज जिला बल से संबद्ध इन महिला सिपाहियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्य पूरा कर जिम्मेदारी संभाल ली है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित समाहरणालय में उद्योग वार्ता का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने उद्यमियों और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं की समस्याओं, रोजगार सृजन और उद्योग स्थापना को लेकर चर्चा की। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने आज निर्मली अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न राजस्व और लोकहित से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए हैं। किशनगंज जिले के टेढ़ागांच स्थित बालिका विद्यालय में बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण विषय पर

0: जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरवल की जिलाधिकारी अमृषा बैंस ने खनन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक में जिले में चल रही खनन गतिविधियों, बालू घाटों की स्थिति और खनिज परिवहन पर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में आज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉट की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध कारोबार पर नियंत्रण के साथ ही नशे के विरुद्ध जागरूकता को लेकर चर्चा की गई। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग पर पुलिस लाइन के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। प्रदेश के सभी पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 जून को करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदेश भर में केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। और मौसम विभाग ने पटना, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नालंदा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
4: नालंदा जिले की सदियों पुरानी और विश्व विख्यात हस्तकरघा कला बामन बूटी साड़ी और फैब्रिक को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग मिल गया है। नाबार्ड और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से मिली यह उपलब्धि न केवल नालंदा बल्कि पूरे बिहार की सांस्कृतिक विरासत के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। चेन्नई स्थित GI रजिस्ट्री द्वारा प्रदान की गई इस मान्यता से बामन बूटी की मौलिकता और विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण मिलेगा। GI टैग मिलने के बाद अब इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी तथा स्थानीय बुनकरों को बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी। इस उपलब्धि पर ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने बुनकरों को बधाई दी और कहा कि जीविका सहित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से बामन बूटी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इधर खरीफ 2026 सीजन को लेकर जिले में कृषि गतिविधियां तेज हो गई है। कृषि विभाग ने इस वर्ष 1,53,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विभिन्न फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें धान उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगभग 1,47,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है। विभाग को उम्मीद है कि सामान्य मानसून और समय पर कृषि इनपुट उपलब्ध होने पर जिले में खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन सकता है। इधर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, मिट्टी जांच, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सभी प्रखंडों में शारदीय खरीफ महाअभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं कृषि विभाग ने इस वर्ष किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। राजगीर प्रखंड के चयनित किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इस नकदी फसलों की बाजार में अच्छी मांग है और कम समय में बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। बिहार शरीफ शहर की सीवरेज और स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। अमृत 2 योजना के तहत बिहार शरीफ स्मार्ट के लिए इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन प्रणाली तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है।

0: लगभग 101 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य गंदे पानी को बिना उपचार के नदियों और नालों में जाने से रोकना है। परियोजना के पूरा होने पर जल जमाव की समस्या में भी कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को भी मजबूती मिल रही है। 226 अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 173 इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष इकाइयों पर कार्य जारी है। इन इकाइयों में गीले कचरे को नाडेप विधि से जैविक खाद में परिवर्तित किया जा रहा है। परबलपुर, नगरनौसा, बेन और कराय पसुराय प्रखंड की कई पंचायतों में जैविक खाद का उत्पादन शुरू हो चुका है। इससे एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बढ़ेगी, वहीं किसानों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जैविक खाद उपलब्ध हो सकेगी। राजगीर में आयोजित विश्व विख्यात राजकीय मलमास मेला 2026 का सफल समापन हो गया। एक महीने तक चले इस धार्मिक आयोजन में देश विदेश से पहुंचे करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने ब्रह्म कुंड सहित विभिन्न पवित्र कुंडों में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे मलमास के दौरान राजगीर की पंच पहाड़ियां, मंदिर, मठ और साधु संतों के आश्रम श्रद्धा और भक्तिमय रहे। प्रशासन के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या ने इस वर्ष कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेले के दौरान सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 5,000 पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। इधर मिशन निपुण बिहार के 5 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आगामी 1 से 7 जुलाई तक जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में पठन पर्व आयोजित किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय ने बताया कि अभियान का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे नालंदा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार।
3: प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:50 हो चुके हैं। अब श्रोताओं, लोग लीजिए पेश है फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। हेलो मनपसंद सुनने से पहले आइए सुन लेते हैं एक छोटा सा संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं आपका रेडियो दोस्त विनोद लेकर हाजिर हैं आप सभी का चहेता कार्यक्रम हेलो मनपसंद। श्रोताओं, फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई है, लेते हैं कार्यक्रम का पहला कॉल। हेलो मनपसंद।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? जी जी जी, गिरेंदर जी।
1: हाँ,
0: क्या हालचाल है? आप तो नियमित श्रोता हैं, पत्र भी भेजते हैं आकाशवाणी सासाराम। आपका पत्र देखकर हम लोग को बहुत खुशी होती है।
1: काफी दिन से जुड़े हुए सर।
0: जी जी जी, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: राज।
0: राज
1: जी, का जो है, इतना मैं चाहूं तुझे।
0: इतना मैं चाहूं तुझे, चलिए लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत राज फिल्म से।

0: हेलो मनपसंद,
1: पसंद
0: बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: ये विजय बैठा बिलारी गांव बिलारी से बोल रहा है सर।
0: अच्छा, बिलारी से। किधर है बिलारी?
1: बिलारी आपके रेडियो स्टेशन से सीधा उत्तर 14 किलोमीटर के दूरी पर।
0: अच्छा, सिलारी बिलारी,
1: जी सिलारी बिलारी
0: शिवसागर प्रखंड में।
1: जी
0: जी जी
1: सिसागर
0: जी
1: प्रखंड में सिलारी पड़ता है, बिलारी करघर प्रखंड में पड़ता
0: करघर प्रखंड में। जी, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: है। सभी प्रोग्राम जो है वो सभी सुनते हैं हम,
0: जी
1: लेकिन उसका गुणवत्ता में कुछ पहले से तो समय भी उसका 5 मिनट कम हो गया, गाने भी उसे बजाए जाते हैं इसलिए उसकी गुणवत्ता में कुछ कमी आ रहा है।
0: तो आप कौन सा कार्यक्रम के बारे में कह रहे हैं?
1: सुनते हैं सर गुप्ता माइक्रोफोन हुआ, इसके
0: अच्छा,
1: बाद विज्ञान और साहित्य हुआ,
0: जी जी जी
1: इसके बाद शरण संसार।

0: रक्षक हुआ, पुनर्नवा हुआ, खेल खिलाड़ी हुआ।
1: विजय जी, मैं एक आपसे विनती करना चाहता हूँ। आपकी जो बातें हैं सर आँखों पे हैं। आप अपने पत्र के माध्यम से हमारे आकाशवाणी सासाराम को सुझाव भेज सकते हैं, हम इसका निदान, हम कोशिश करेंगे कि इसका निदान किया जाए।
0: जी सर।
1: जी, क्या सुनना चाहते हैं?
0: आज सुनवा दीजिए हमको, पूरी फिल्म का गाना है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को।
1: लगता है काफी गम में है अभी।
0: जी सर, बहुत पुराना गाना है, बड़ा अच्छा लगता
1: जी
0: है।
1: जी ठीक है ठीक, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का ये गाना।

0: हेलो मनपसंद,
1: नमस्कार
0: नमस्ते।
1: सर, मैं शेख जफर सर कुआं जिला रोहतक बिहार से बोल रहा हूँ
0: कि शेख जफर,
1: जी। आप कौन है?
0: हमारा तो नाम विनोद सिंह है। ऐसा लगता है कि आप नियमित श्रोता हैं हमारे आकाशवाणी सासाराम का।
1: आपकी
0: चलिए,
1: जितने
0: धन्यवाद
1: तारीफ
0: धन्यवाद।
1: में बहुत अच्छी आवाज आती है।
0: इतना कम नहीं, हम लोग के सौभाग्य है कि आप हम लोग को कार्यक्रम को सुनने के लिए आप कीमती समय निकाल कर बैठे रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मतलब धन्यवाद।
1: जी, पसंद आपकी भी, मैं आपका सुनता हूँ
0: जी
1: सर,
0: जी
1: आज भी सुना
0: अभी आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: सर। तो हम तो सुनेंगे, पहली बार बात हो रही है
0: जी जी
1: और ससा माए तो आपसे हम जरूर मिलूंगा।
0: आइए आइए, बिल्कुल स्वागत है।
1: आपसे मिलूंगा, दो तीन दोस्तों का नाम याद कर लूंगा। फिल्म का नाम है सर पालकी, इसे मोहम्मद रफी ने गाए थे।
0: जी जी
1: ठीक है, एक लाइन मतलब छोटा सा लाइन है, इसको गाकर सुना दे रहा हूँ।
0: जी जी
1: ये है।

शेख जफर जी, आप आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए, बधाई है आपको कि हमारे आकाशवाणी सासाराम में आपने कॉल किया अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए। तो लीजिए, सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत।

0: हेलो मनपसंद,
1: जी, मैं किस सज्जन से बात कर रहा हूँ ये तो बताएं।
0: आप तो विनोद सिंह से बात कर रहे हैं।
1: जगह का दुनिया में कोई पैमाना नहीं, गम जगह का दुनिया में कोई पैमाना नहीं, रो कर आते हैं सब, हंस कर जाने का भी पैमाना नहीं।
0: वाह,
1: जिंदगी अनमोल है, जिंदगी अनमोल है, इसे जान लो, कब क्या पता बिछड़ जाए, इसका कोई ठिकाना
0: ठिकाना
1: नहीं।
0: नहीं। वाह वाह वाह, आपने अभी परिचय नहीं दिया, कौन सा आप बोल रहे हैं? आप
1: मैं गोकुल छाव गंग जला सहरसा
0: सहरसा से? सहरसा से? जी
1: से
0: जी
1: राधे कुमार विद्या।
0: राधे कुमार विद्यार्थी जी बोल रहे हैं।
1: जी,
0: जी
1: आपको मेरा नमस्कार और सुनने वाले सभी दोस्तों को भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार। आप तो हमारे रेडियो परिवार के नियमित श्रोता हैं, जो भी सुझाव और शिकायत देंगे उस आंखों पर रहेगा। तो आज आपने फोन कॉल किया है आकाशवाणी सासाराम, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं कुछ सुनने से पहले कुछ कहना चाहूंगा।
0: जी जी बोलिए।
1: जितने भी सज्जन हैं अनाउंसर फरमाइशी

0: इसे जान लो, कब क्या पता बिछड़ जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं।
1: वाह वाह वाह, आपने अभी परिचय नहीं दिया, कौन सा आप बोल रहे हैं आप?
0: मैं गोकुल छाव गंग जला
1: सहरसा से, सहरसा से। जी जी,
0: राधे
1: कुमार विद्यार्थी जी बोल रहे हैं।
0: जी जी, आपको मेरा नमस्कार और सुनने वाले सभी दोस्तों को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार, आप तो हमारे रेडियो परिवार के नियमित श्रोता हैं, जो भी सुझाव और शिकायत देंगे सर आंखों पे रहेगा। तो आज आपने फोन कॉल किया है आकाशवाणी सासाराम, क्या सुनना चाहते हैं आज?
0: मैं कुछ सुनने से पहले कुछ कहना चाहूंगा।
1: जी जी बोलिए।
0: जितने भी सज्जन हैं अनाउंसर फरमाइशी प्रोग्राम में,
1: जी जी,
0: एक या दो ज्यादा से ज्यादा तीन श्रोताओं का नाम ही लेते हैं, ये गलत है।
1: आपकी शिकायत सर आंखों पे महाशय, पत्रों के अनुसार ही नाम को लिया जाता है, क्योंकि जितना पत्र आते हैं उसी में सबको देखना पड़ता है, करना पड़ता है।
0: लेकिन और जो दूसरे लोग हैं वो अपना नाम सुनना चाहते हैं, आप दो या तीन कार्ड मत लें, ये मेरा निवेदन है आपसे।
1: नहीं, आपकी जो सुझाव है सर आंखों पे, आगे से इस पर ध्यान दिया जाएगा, रखा जाएगा। तो आज फिलहाल में क्या सुनना चाहते हैं?
0: जी जी
1: राधे जी,
0: फिल्म का नाम है एक राज और गीत के बोल हैं उठेगी तुम्हारी नजर धीरे।
1: लीजिए सुनिए अपने मन पसंद का यह गीत।

0: गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: हम सासाराम बोलिया से बोल रहे हैं सर।
0: अच्छा, सासाराम बोलिया से।
1: हाँ,
0: तो आप
1: पहले भी
0: हमारे
1: कॉल कर चुके हैं
0: आकाशवाणी सासाराम के
1: बुकिंग
0: नियमित श्रोता हैं।
1: होगी।
0: कैसा लगता है हमारा प्रोग्राम देख सुनकर?
1: हाँ, सब सारे प्रोग्राम से सुनते अच्छा ही लगता है। इधर ज्यादा ही लोकगीत ज्यादा ही बजा रहे हैं आप लोग।
0: कुछ समय का पाबंदी है, बाहर से कुछ समय का पाबंदी होता है, उसके चलते किया जाता है। उस सब बाद में फिर बदल सकता है,
1: अच्छा,
0: चेंज हो जाएगा। आप अपना नाम क्या बताइए, एक बार फिर से बोल देती।
1: हमारा नाम पूनम सिन्हा है सर।
0: पूनम सिन्हा जी, आप क्या सुनना चाहती हैं आज? बोलिए,
1: गाना सुनना है,
0: कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: चश्मे बद्दू का गाना है,
0: ये
1: कहाँ
0: चश्मे
1: से आए बजरा।
0: कहाँ से आए बदरा? आप जो गाना सुनने जा रही हैं अभी, तो फिलहाल में लगता नहीं है कि बदरा आने वाला है।
1: इसीलिए तो सुनना चाहते हैं ताकि बजरा घिर जाए और लू बंद हो जाए चलना।
0: चलिए, आपका जो
1: गर्मी
0: मैं
1: है।
0: आपका जो पसंद है, मैं इसके लिए दाद देता हूँ। लीजिए, सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत।
2: कहाँ

0: हेलो मनपसंद, बोलिए। सुजय जी, आपका तो मैं आवाज़ पहचान गया।
1: नमस्कार
0: नमस्ते नमस्ते, आप हमारे आकाशवाणी सासाराम के नियमित श्रोता हैं और
1: सर
0: आपकी
1: जी।
0: आवाज़
1: नमस्कार।
0: शायद ही कोई न पहचाने। आप जो हमारे सासाराम के जो श्रोता हैं उसमें एक अलग हट के श्रोता हैं और आपकी जो सुनने का जो तरीका है मुझे बहुत पसंद आती है। आज आपने फ़ोन किया
1: धन्यवाद
0: आकाशवाणी के सासाराम, आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: सर। हम सुनना चाहेंगे आज फिल्म राम तेरी गंगा मैली 1985 में आई
0: जी
1: थी
0: जी राम तेरी गंगा मैली।
1: जी। इसके टाइटल सॉन्ग सुरेश वाडकर की आवाज में है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा
0: नहीं,
1: रहेगा।
0: आपकी ख्वाहिशें जरूर पूरी की जाएगी। और आज
1: सुनना
0: आपसे
1: चाहेंगे
0: बात हो रही है बहुत मुद्दत के बाद, तो क्या आप हमारे रेडियो परिवार की तरफ से कोई शिकायत भी है, सुझाव भी है?
1: शिकायत तो आज का भी यही है कि आज ऑनलाइन आपका नहीं चल रहा था, ऐप से नहीं बज रहा था।
0: अच्छा, ये तो नेटवर्क
1: पर
0: प्रॉब्लम है, ये तो बाहर की चीज़ है। हम लोग के तरफ से, कोई परिवार के तरफ से कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। और फिलहाल में लीजिए, सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली से।

0: हेलो मनपसंद,
1: हेलो मनपसंद, नमस्कार।
0: नमस्कार। बताइए आप कौन बोल रहे हैं?
1: अक्रम सेंट प्रिंस नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल में सर सीतामढ़ी।
0: अच्छा, नाज मंजिल महसूस सीतामढ़ी।
1: विनोद जी,
0: जी,
1: आपसे बड़ी तमन्ना थी कि मैं आपसे बात करूं।
0: चलिए आज तमन्ना भी पूरी हो गई।
1: सर ऐसा क्या बात है विनोद जी, हम लोग इतने पुराने श्रोता है, आपके प्रोग्राम में कभी अक्रम सेंट प्रिंस का नाम नहीं आता, क्या हमसे का?
0: अकरम हुसैन प्रिंस जो महसूल सीतामढ़ी से, ऐसा तो सर शिकायत नहीं है, नाम तो आता है।
1: आज भी आपको नहीं पढ़े, कई दिन से आ रहे, नहीं एक दिन पढ़े, क्या बात है, हमसे कोई नाराजगी है?
0: अरे नहीं, ऐसी क्या बात है सर, मनी नाराजगी हो सकती है? आप हमारे हमारे आकाशवाणी सासाराम के नियमित श्रोता हैं, आप हमारे भगवान तुल्य हैं, ये
1: नहीं
0: कैसे हो
1: भगवान तो
0: सकती है
1: नहीं
0: आपसे
1: है, देखिए
0: नाराजगी?
1: हम
0: क्यों
1: तो
0: हो सकती
1: भाई है,
0: है?
1: बड़े बड़े हैं
0: होता है, कभी खत है, कभी किसी का, कभी किसी का, चूंकि समय
1: हमारी
0: कम
1: उम्र,
0: रहता है। पांच
1: आप हमसे छोटे भाई है।
0: अपने जुबान से जरूर बोले हैं, बहुत बार बोले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोले हैं। हो सकता है आज नहीं लिए होंगे, उसको ख्वाहिश को फिर पूरी कर दी जाएगी। आपसे बातें करके बहुत बढ़िया लगा, हमको बहुत अच्छा लगा।
1: दोस्त को याद कर लेते हैं,
0: जी,
1: आसिफ भाई हैं आपके
0: स्वागत है।
1: कलेर के,
0: जी,
1: और राधे कुमार विद्यार्थी
0: विद्यार्थी
1: हैं,
0: जी,
1: सरोता
0: जी
1: वाली मूवी, हमारे लगभग 40 साल से ज्यादा दोस्ती है उनसे
0: जी
1: भी। मैं 45 साल से आकाशवाणी केंद्र से जुड़ा हूँ,
0: अरे वाह
1: आज से नहीं 45 वर्षों से। हाँ
0: जी,
1: ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा, जरा ध्यान दीजिएगा बड़े
0: जी
1: भाई पर, हम इतने कहेंगे। देखिए आपसे मेरी शिकायत है, कोई दुश्मनी नहीं है, मैं शिकायत
0: जी जी
1: है मेरी, हम बड़े होने के नाते आपसे शिकायत कर सकते हैं,
0: जी नहीं, आपकी शिकायत जरूर दूर की जाएगी। आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: सुना दीजिएगा।
0: जी, कौन सा गाना?
1: मोहम्मद रफी गए बड़ी दूर से आए, प्यार का तोहफा
0: तोहफा
1: लाए।
0: लाए हैं, चलिए लीजिए,
1: ओके।
0: सुनिए अपने मनपसंद का यह गाना।
2: बड़ी दूर से

0: हेलो मनपसंद,
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: मैं गोलाघाट असम से रमेश पात्र बात कर रहा हूँ।
0: कौन सा सर बोल रहे हैं आप?
1: गोलाघाट
0: असम से। नाम बता देते सर
1: असम। हाँ, रमेश
0: जी। रमेश जी,
1: पात्र।
0: आप भी तो हमारे आकाशवाणी का नियमित श्रोता हैं। पत्र के माध्यम से कभी आपको हमने नहीं देखा है कि आप भी पत्र को पत्र वगैरह भेजा कीजिए आकाशवाणी में।
1: अच्छा, भेजा करूँगा।
0: पत्र भेजने से ये होता है कि जो है नाम जो है जुबान पे याद रहती है। तो मैं चाहूँगा कि आगे आप पत्र भी भेजें हमारे पास, और ये तो फोन इन कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा, ये तो आपसे रूबरू हो ही रही है। तो आप आज फोन किया है, आपका फोन भी लग गया है, बहुत भाग्यशाली हैं आप। तो आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: सच्चा झूठा मूवी का एक गाना है, दिल
0: सच्चा झूठा,
1: को देखो चेहरा ना देखो।
0: बहुत अच्छी पसंद है आपकी।
1: इस गाने को डेडिकेशन करना चाहता हूँ
0: जी,
1: दोस्तों को।

0: माइकल मुंडा है, अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, पूरन वर्मा, राकेश है, रमेश प्रजापति है, भगवान सिंह परमार, प्रमोजित चक्रवर्ती और चंद्रकांत टाइट।
1: जी जी लीजिए, सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत फिल्म सच्चा झूठा से।

0: छोटा।
1: इसी गाने के साथ आपका चहेता कार्यक्रम हेलो मनपसंद अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम को आप आज शाम 7:50 पर सुन सकते हैं और पुनः शेष भाग शनिवार शाम 7:50 पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग बता दें कि प्रत्येक बुधवार अपराह्न के 11 बजे से 12 बजे के बीच की जाती है। आपसे एक अनुरोध है, निवेदन है कि जिन श्रोताओं का फोन इस सप्ताह लगे हुए हैं या जिन श्रोताओं से बात हो गई है, कृपया कर अगले सप्ताह आप फोन न करें, ताकि और ज्यादा श्रोताओं से बात करने की मौका मिल सके और श्रोताओं की भी फरमाइशें पूरी की जा सके। धन्यवाद।

फॉरेन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद, यह कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: भारत 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार हिंदी, अंग्रेजी और फिर उर्दू में। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मूज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
2: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत करा

0: करने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
2: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
3: We had 26 delegates from
4: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित

0: सूचित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर ₹94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड

0: मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार संध्या अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं। अब लीजिए पेश है शास्त्रीय गायन पर आधारित कार्यक्रम सूर सौरभ। कलाकार हैं पंडित बीजी योगी। तबले पर संगत कर रहे हैं कनाई दंत। और आज का राग है जय जवंती।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है आज का सूर सौरभ कार्यक्रम एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: विविध भारती आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोलीमा तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम कैदी।

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेज और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था, इसलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी। और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

0: रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

कार्यक्रम आज के फनकार अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब आइए लेते हैं आनंदे एल्बम पर आधारित गानों का कार्यक्रम है रस रंग। कार्यक्रम का पहला एल्बम गाना हमने लिया है एल्बम तुझे ढूंढे मेरी जान से। आसित त्रिपाठी के आवाज़ हैं, शकील आजमी के शब्द हैं और संगीत है राशिद खान के।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला एल्बम गाना अभी आपने सुना अजीत त्रिपाठी की आवाज़ में। शकील आजमी के शब्द थे और संगीत निर्देशन था राशिद खान का। एल्बम का नाम था तुझे ढूंढे मेरी जान। कार्यक्रम का अगला एल्बम गाना हमने लिया है एल्बम शाम से ही दिल। इसे आवाज़ दी है सुमन शेखर मनंदर ने। इम्तियाज़ वफा के शब्द हैं और संगीत है इम्तियाज़ वफा के।

शाम से ही दिल। जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने सुमन शेखर मनंदर की आवाज़ में सुना यह एल्बम गाना। गीत और संगीत थे इम्तियाज़ वफा के। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की मधुर आवाज़ में एल्बम बरसात हो जाए का यह खूबसूरत एल्बम गाना। इसे लिखा है रश्मि विराग ने और संगीत दिया है पायल देव ने।

पायल देव और जुबिन नौटियाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना। यह एल्बम गाना रश्मि विराग के शब्द थे और संगीत निर्देशन था पायल देव के। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। रस रंग कार्यक्रम के शेष गाने अब आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओ, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में जी म्यूजिक ओरिजिनल्स का यह गीत। गीत के बोल हैं इतनी मोहब्बत, निहाल तुरों के शब्द हैं। आजिम शिराजी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है अमजद नदीम आमिर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना निहाल तुरो की आवाज़ में यह एल्बम गाना। आजिम शिराजी के शब्द थे और संगीत दिया था अमजद नदीम आमिर ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और आखिरी एल्बम गाना हमने लिया है एल्बम सावन की बूंदे से। स्टेविन बिन की आवाज़ें राशिद खान के गीत और संगीत हैं।

तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब वक्त हो चला है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट तराने का। चित्रपट तराने कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दोस्ती, शब्द है मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, चित्रपट तराने कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। मजरू सुल्तानपुरी के शब्द थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम था दोस्ती। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज़ में। इंद्रजीत सिंह तुलसी के शब्द हैं और धुन बनाई है कल्याण जी, आनंद जी ने। फिल्म का नाम है कालीचरण।

सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने में अभी श्रोताओं आपने सुना फिल्म कालीचरण का यह खूबसूरत गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। शब्द थे इंद्रजीत सिंह तुलसी के और संगीत निर्देशन था कल्याण जी आनंद जी का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं फिल्म में काली टोपी लाल रुमाल का यह बेहतरीन गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, मधुर सुल्तानपुरी के शब्द हैं और संगीत दिया है चित्र गुप्त ने।

कार्यक्रम में अभी आपने सुना काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का यह बेहतरीन गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द थे और संगीत दिया था चित्रगुप्त ने। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म खुदगर्ज से। आवाज़ें मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की है, शब्द हैं इंदिवर के और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। प्रस्तुत करता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब श्रोताओं, आइए डालते हैं एक नज़र कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर।

कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत हम करेंगे सुबह 5:51 से। 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार चिंतन श्री रामचरितमानस पाठ संगीत सरिता और भूले बिसरे गीत। सुबह 7:30 पर हम पेश करेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। सुबह 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:20 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार।

10:05 पर आप सुनेंगे हिंदी कार्यक्रम साहित्य की, 11 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी, दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी, सांध्यकालीन सभा में आप सुनेंगे 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से, शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।

शाम 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:15 पर आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर हमारे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र से। श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं कल के मौसम पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 25 जून को जिले में लू हीट वेव चलने की संभावना है। इसके बाद जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70% तथा दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है। जिले में लू यानी कि हीट वेव चलने की संभावनाएं हैं। तो श्रोताओं, अभी हम नज़र डाल रहे थे कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर, और उसके बाद अभी हम कल के मौसम के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी दे रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। हमारे स्टूडियो के घड़ी में थोड़ी देर में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और आरएफआईडी सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब आज की हमारी यह सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।